0: B12 testing and many other preventive health screenings. Call or text 214-666-6259. Passion Health Primary Care.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं।
6: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics, and designer furnishings included?

भाई जश्न तो चल गया है, रंग भी चढ़ गया है, क्योंकि इपी द हिपी इज बैक इन द हाउस. दैट इज राइट माय फ्रेंड्स, दिस इज मी एंड आई एम बैक, एंड आई होप यू आर इंजॉयिंग टुडेज शो, बिकॉज टुडे वी हैव गॉट सम अमेजिंग म्यूजिक दैट इज हैपनिंग. एंड सबसे पहले मेरे घुसते ही मैंने क्लॉक इन भी नहीं किया अभी तक, मैं भूल ही गई. ले बातें करते करते क्लॉक इन ही भूल गई मैं, लेकिन आते ही कॉल्स आनी शुरू हो गई, रिक्वेस्ट आने शुरू हो गए. सो दिस वन गोज आउट टू डीजे जी. मैंने बड़े दिनों बाद ये गाना सुना है, तो ये आपके लिए.

एंड यारो दोस्तों, वी आर बैक. यस, दिस इज एपी द हिप्पी ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. गाइस, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मुझे कॉल करके बोलते हो हाउ मच यू आर एंजॉयिंग माय शो एंड ऑल द बकवास ज्ञान आई गिव यू. आई लव इट बिकॉज यू नो देन आई फील लाइक मेरी जो 5 मिनट की रिसर्च मैं करके आती हूँ अपने शो से पहले, उसका रिसर्च का फल मुझे मिल जाता है. सो ऑनेस्ट है ना, मतलब वी डोंट प्रिटेंड ऑन दिस शो. वी आर रियल, वी टॉक टू द पॉइंट एंड वी आर ऑनेस्ट. दैट्स द होल पॉइंट. चाहे आप वो झूठ ही क्यों ना बोलो, लेकिन ऑनेस्टली झूठ बोलना चाहिए. हाउ आयरोनिक इज दैट, है ना. तो गाइज, उसी से रिलेटेड, अगर बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, अगर आप किसी एक्सीडेंट में कभी फंस जाते हैं या फिर यू फेस सम काइंड ऑफ एन इंजरी या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, देन गिव अ कॉल टू द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा, क्योंकि आप अपनी हीलिंग पे काम करिए एंड उमर ख्वाजा विल हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. एंड दिस इज अ पर्सनल इंजरी अटर्नी, तो मेक श्योर दैट यू आर हर्ट एंड देन गिव अ कॉल टू उमर ख्वाजा, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा. मतलब अगर आपको चोट वोट लग गई और आपके इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि नहीं आपके पास तो पर्सनल बॉडीली इंजरी कवरेज है ही नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन यू गॉट अ व्हिप्लैश, यू नो होता है कई बार इफ यू आर रेयर एंडेड इन योर कार एंड ऑल ऑफ दैट, दोज थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू दैट. सो ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस लूप होल बैक देन. बट इफ यू एवर फेस एनीथिंग लाइक दैट, आपको पीछे से किसी ने आकर ठोकर मार दी और आपकी फॉल्ट भी नहीं थी एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, देन गिव अ कॉल टू उमर ख्वाजा. कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. यस फ्रेंड्स, इट इज 7:23 ऑन द क्लॉक एंड वी शैल प्ले यू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई डोंट नो आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंच बट इट्स ओके. आई थिंक आई कैन डू अ फेक फ्रेंच एक्सेंट रियली वेल. हाउएवर, लिसन टू द सॉन्ग एंड देन व्हेन यू कम बैक देन yeah, we'll talk some more. Abhi to bahut time hai yaar, main 10 baje tak hoon. Today is Thursday. I hope you had a wonderful day so far.

0: भाई क्या कर रहे हैं हम लोग के वादे और ये सपने भी ये लोग बना जो रहे थे, इनके तो सपने सीधे साधे नहीं थे। लेकिन अगर आपके इनकी तरह सीधे साधे सपने हैं, नॉट अनलाइक देम, देन यू शुड रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज। क्योंकि सीधे साधे सपने वही होता है यार, सबके सेम होते हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बच्चे हो, वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट। इफ यू हैव अ सीधा साधा सपना लाइक दैट, विच इज टू बिल्ड योर सिंपल हाउस और मे बी नॉट सो सिंपल हाउस, देन यू नीड टू रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज। योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक। सिंस 1998 दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द नेशन फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग देयर हाउसेज। कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम्स होम हैपन, ड्रीम होम्स हैपन। अरे यार, तो गाइज हम लोग ब्रेक में जाने वाले हैं थोड़ी देर में। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे देन आई एम गोना प्ले अ रिक्वेस्ट। भाई मेरे तो कॉल पे कॉल आ जा रही है, लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग अप। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन जस्ट अबाउट 10 seconds। राइट, वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक। इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट, यस यू कैन कॉल मी एंड आई विल प्ले देम फॉर यू। सो या, एंजॉय।
1: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में। अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM। मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।
2: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
7: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इस powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: भाई हुक्का बार की अगर बात करें तो हम तो बड़े सारे एडवर्टाइजमेंट्स बोलते रहते हैं. देर इज़ वन ऑफ दोज जिसका मैं पहले एक बार गिव अवे भी दे चुकी हूँ, विच इज़ मिराज लाउंज. मेरे पास आज उसका एड नहीं है, लेकिन अगर आपको रियल हुक्का बार गाना सुनने के बाद हुक्का बार की फीलिंग भी चाहिए, देन गो टू अ प्लेस विच एक्चुअली हैज सम हुक्का, है ना. तो भाई इसके पहले मैं अभी बोल रही थी सपनों का घर एंड ऑल द ड्रीम होम्स एंड ऑल, तो उनसे उसे हमारे वन ऑफ आर लिसनर्स गौरव जी, जिनसे मेरी बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई अभी, उन्होंने बोला भाई आपको वो गाना याद है सपनों से, मुझे ये गाना याद आ गया. मैंने कहा बिल्कुल याद है भाई, ये आपके लिए गौरव, दिस इज तेरे मेरे सपने के लिए, ना ना ना ना ना ना. बहुत पुराना गाना है, इट फीचर्स अरशद वारसी एंड चंद्रचूड़ सिंह एज द लीड कास्ट इन दिस मूवी, एंड आई थिंक द मूवी इज ऑल्सो कॉल्ड तेरे मेरे सपने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन.
1: Make

guys, we are back. This is Ippy the Hippie, and you're listening to Funasia Radio 104.9 FM. And this is my show. Kya naam hai show ka? An Evening in Dallas. That's right, guys. आज हमारे पास बड़ा अमेजिंग सा होने वाला है, विच इज ऑफ कोर्स हम 8 बजे अपना गिव अवे वाला गेम खेलने वाले हैं. एंड देन टुडे वी आर गोना प्ले अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गेम, समथिंग डिफरेंट दैट वॉन्ट बी व्हाट वी नॉर्मली प्ले. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, या तो कॉपीकैट गेम होता है या गेस द मूवी गेम होता है व्हेन आई टेल यू अ स्टोरी. टुडे हम लोग खेलेंगे वर्ड अंताक्षरी, बिकॉज व्हाई नॉट. थोड़ा मजेदार करते हैं यार, रोज सेम गेम खेल के बोर नहीं हो जाते. Although I know I'm amazing and I make things really interesting and fun, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चेंज करना भी जरूरी होता है. तो आज हम खेलेंगे वर्ड अंताक्षरी, और वो क्या होगा गेम आई विल टेल यू वेरी वेरी शॉर्टली. लेकिन उसके पहले गाइज, इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस और यू आर नॉट गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम योर कंपनी, विच आई नो कैन बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एंड इफ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड यू नो यूर डूइंग योर ओन बिजनेस, आई नो हाउ हार्ड इट इज. सो इफ यू डोंट हैव समथिंग लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, देन यू नीड टू रीच आउट टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज दे हैव समथिंग नोन एज पैशन हेल्थ डायरेक्ट. इट इज ओनली फॉर $85 अ मंथ एंड इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटेटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड सो मच मोर. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthphysicians.com. जस्ट रिमेंबर कि ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, देर आर एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, सो डेफिनेटली गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर यू साइन अप फॉर इट. Their Irving and Frisco location is also open on Saturdays and Sundays, so don't forget that. Okay, let's listen to the song, and then when we come back from the break or after the song, I will tell you what game we are going to play. Okay, here we go.

तो गाइज, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम वर्ड अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन वो 8 बजे के बाद होता है. 8:05 हमारा गिव अवे टाइम होता है, दैट्स व्हेन वी विल प्ले इट. तो वर्ड अंताक्षरी क्या है? बेसिकली अगर मैं एक गाना बजाती हूँ, ठीक है, जैसे दिल चीज क्या है आप मेरी, ठीक है, आई विल प्ले द सॉन्ग. आपको उसके जो जो लाइन बजेगी उसमें से एक वर्ड निकालना है, ठीक है, और उस वर्ड से एक और कोई गाना आपको गाना है. फॉर एग्जाम्पल, दिल चीज क्या है, अब मैंने चीज निकाला उसमें से, नॉट खाने वाली चीज यार, हिंदी वाली चीज, लाइक अ थिंग, थिंगमबॉब. तो अगर चीज वर्ड निकाला है तो आप उससे गाना बना सकते हैं. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू, फिर आपको वो पूरा बिगिनिंग का उसका गाना पड़ेगा, उसका जो मुखड़ा होता है, मुखड़ा अंतरा जो होता है ना, मुखड़ा गाना पड़ेगा आपको, ठीक है, डन. तो ये गेम हम खेलेंगे 8:05 के बाद. आप रेडी करके रखो अपनी सॉन्ग बैंक, थोड़ा रिव्यू कर लो, पता नहीं कौन सा गाना बजेगा, थोड़ा सोच लेना. तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करो.

गाइस, वी आर अबाउट टू गो इनटू अ ब्रेक. ब्रेक के पहले एक छोटा सा गाना मैं आपके लिए और बजाती हूँ, फिर ब्रेक के बाद जब आएंगे तब हम गेम खेलेंगे. ओके, एज प्रॉमिस्ड.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
6: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
7: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
8: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
7: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
8: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
6: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
9: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life.

0: little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com. It's the time to clock out.
1: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
7: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
8: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
7: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
9: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
7: The वन, Force of the Forest,
10: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
7: On 25th September, in cinemas near you.

योर लकी वीक, क्योंकि इस हफ्ते हमारा पूरा फन पिज्जा किचन का गिव अवे था. तो इफ यू हैवन वन योर $10 गिफ्ट कार्ड, दिस इज योर चांस टू विन. ओके, फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को हैज न्यू फ्लेवर्स, मैक्सिकन इंस्पायर्ड फ्लेवर्स, विच इज फिएस्टा वेजी, फायरी पोयो लोको, सी फूड पैक, सीनियर कैमारॉन एंड सो मच मोर. एंड ऑल दिस स्टार्टिंग दिस वीकेंड. फन पिज्जा किचन इज गोइंग टू बी ओपन टिल 3 o'clock. तो इफ यू हैव अ लेट नाइट मूवी एंड देन आफ्टर दैट यू गेट द मंचीज और यू आर हैंगिंग अराउंड टाउन डूइंग सम थिंग्स दैट वी शुडंट बी टॉकिंग अबाउट ऑन एयर एंड यू गेट द मंचीज, देन यू नीड टू गो एंड हेड डाउन टू फन पिज्जा किचन और इवन फॉर दोज लेट गरबा नाइट्स, यू नो वी नो दैट दैट गोज ऑन टिल प्रीटी लेट. सो गो टू फन पिज्जा किचन, दे आर ओपन टिल 3 o'clock इन द मॉर्निंग. येस, दे हैव न्यू फ्लेवर्स, लेट नाइट क्रेविंग्स, ऑल ऑफ दिस इज ऑर्डर्ड. तो गेम क्या है, आई एम गोना प्ले यू अ सॉन्ग, ठीक है? उसका मैं मे बी लाइक 30 seconds, मैं स्ट्रेट गाने पे जा रही हूँ, उसका 30 seconds मैं बजाऊंगी और आपको उसमें से उसका जो वर्ड है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स है वैसे तो, यू चूज द वर्ड ऑफ योर चॉइस एंड यू हैव टू सिंग वन पूरा मुखड़ा फ्रॉम दैट दैट सॉन्ग. ओके, यू हैव टू, जो भी वर्ड आप चूज करोगे उसका पूरा मुखड़ा गाना पड़ेगा. जैसे मैंने बोला, अगर मैं गाती हूँ दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ठीक है, ये मैंने गाना इतना सा प्ले किया, फिर आपने डिसाइड किया आप चीज में से गाना गाओगे, देन यू सिंग द होल थिंग इन द बिगिनिंग. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझ पे कोई रोक रोक, इस बल दो पर का जोश दो, पूरा गाना पड़ेगा. यू कांट जस्ट से तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ठीक है? और अगर आप सुर में नहीं गाते हो तो भी चलेगा यार, वी आर नॉट इंडियन आइडल, यहाँ पे इंडियन आइडल तो नहीं है, सारे गामा पा भी नहीं है, तो कैसे भी गाओ लेकिन गाना जरूर पड़ेगा. ओके, सो माई नंबर इज 9722355555 एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग? नंबर डायल करके रेडी रहना, ठीक है? एंड हियर वी गो. एंड अरे गाना

0: Don't touch that dial. Keep listening.
1: FM, yes, you guys, we are back. और जैसे मैंने आपको बोला था 8:05 को हम खेलेंगे हमारा गिव अवे. वेल, लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड विद आवर गेम. लेकिन पहले मैं ये तो बता दूं कि व्हाट कैन यू विन. भाई इस हफ्ते हमारा गिव अवे इज फ्रॉम दी ऑफ कोर्स द मच अवेटेड फन पिज्जा किचन. आई नो मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं भी नहीं, वो भी मुझे कहते हैं यार वी रियली वांट टू विन दिस पिज्जा वाला गिव अवे बिकॉज दैट्स द मोस्ट अमेजिंग फन वन गाइस. इट इज

0: कॉल्स आ रही हैं, सो वी आर गोना पॉज दैट सॉन्ग ओवर देयर. लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो
1: हेलो,
0: कैन यू हियर मी? आप रेडियो को बंद कर दीजिए बैकग्राउंड में, क्योंकि
1: नहीं. यस, आई डिड, आई डिड.
0: हां, ओके ओके, ग्रेट. ओके, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन यू हैव टू पिक वन वर्ड फ्रॉम दैट सॉन्ग एंड सिंग वन मुखड़ा ऑफ एनी सॉन्ग यू वांट. ओके, पहले अपना नाम बताइए.
1: मीत.
0: मीत. ओके मीत, गो फॉर इट. व्हिच वर्ड आर यू गोइंग टू चूज?
1: I would say gore.
0: Gore? Okay. Chalo, the show is yours. Gore se koi aur gaana gaiye.
1: Is there a song like Ye Gori, Ye Gori Kahan Chali?
0: Nah, that's not gonna work. You have to sing it. You have to sing it properly. And we have 30 seconds. Come on, let's go.
1: Nervous, but okay.
0: Okay.
1: Ye Gori to Kahan Chali?
0: I don't think that's a okay. song. I don't think that's a song. But that's a good try. Thank you so much. I'm going to have to take the next caller. Okay. Hi, can you hear me?
2: Yes. Hello.
0: Hi, Rahul. How are you doing?
2: Thank you. I'm doing good.
0: Chalo. Rahul, go for it. Rahul, tumhara to number aa gaya mere caller ID pe, so I figured it out. It was you.
2: Thank you.
0: But
2: yes.
0: Go for it. Are you trying?
2: So, humne, yes, yes, yes. Humne select kiya hai aankhe.
0: Okay.
2: And aankhon se aankhon ki gustakhiya maaf ho.
0: Kya baat hai, wow.
2: Ek tuk tumhe dekhti hai. Itna qualify ho gaya ki aur gaana hai.
0: Are itna ho gaya, itna chalega.
2: Thank you.
0: Guys, this is how you play the game, okay? This is the first time we are trying the game and Rahul, you totally nailed it. Okay, guys? All my listeners,
2: thank you.
0: Is how you play it. तो राहुल के लिए जोरों शोरों से एक तालियां बजाया जाए. मेरा तालियों का रिकॉर्डिंग का ये रहा. चलो ये ओके राहुल, स्टे ऑन द लाइन. आई विल टेक योर इन्फो एंड देन इन द मीन टाइम गाइज यू एंजॉय दिस सॉन्ग. टुमारो और टुमारो तो नहीं, खैर आई एम नॉट देयर टुमारो, बट मंडे व्हेन यू गाइज कम बैक दैट्स हाउ यू सपोज टू प्ले द गेम. ओके, वी आर गोना डू दिस वन मोर टाइम. So let's continue with the song and I'll see you in a bit.

गाइज आई थिंक दैट गेम वॉज अ सुपर डुपर हिट. मुझे इतनी सारी कॉल्स आए ना स्टूडियो में उसके बाद, एक के बाद एक. एंड आई लव इट, आई लव इट कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लेके उसमें पार्टिसिपेट किया. मुझे बड़ी खुशी हुई दैट दिस गेम वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस. ओके, सो वी आर गोइंग टू कीप डूइंग दिस गेम. आई वॉज जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू एंड आई थिंक इट काइंड ऑफ वर्क्स. तो फॉर ऑल माई कॉलर्स who did not win the giveaway but still called to sing the song and tell me, you know, play the Antakshari, the word Antakshari, I will play all of the songs that you suggested as requests. So ek ke baad ek, to ek do logo ne in fact kali kali aake ye gore gore se unhone same gana bola. Fun fact, do logon ne same gana bola, which was gore gore mukde bekala gala jushma. To abhi main unke liye ye baja rahi hu. उसके बाद आई विल प्ले अनदर वन. एक और रिक्वेस्ट आई मेरे पास, रिक्वेस्ट नहीं आंसर टू द क्वेश्चन, बट या आई एम गोना प्ले दैट वन. सो स्टिक अराउंड.

0: You know what the beauty of this game is? The beauty of this game is it brings us back to these songs that we had forgotten about. मतलब ये सारे गाने इतने मजेदार मजेदार होते हैं और हमारे फनीशा के रेगुलर प्लेलिस्ट में नहीं रहते, बिकॉज यू नो हाउ द प्लेलिस्ट वर्क्स इज इट्स एल्गोरिदम, इट विल जस्ट प्ले द सॉन्ग्स दैट यू नो दैट हैव बीन प्लेड रिसेंटली. सो देन व्हेन यू गाइस स्टार्ट नेमिंग ऑल दीज सॉन्ग्स व्हिच वी हैवंट हर्ड इन सो मेनी इयर्स, then the playlist shuffles a little bit and then hum sab type ke gaane sunte hain. Isn't that amazing? It's important to keep refreshing your playlist.
1: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
2: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
5: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
6: कितनी लंबी लिस्ट है?
5: बस 2 पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
6: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
7: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
8: We need to talk.
9: अब क्या हुआ?
8: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
8: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
8: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
4: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Are you trying to protect your business, retain top talent and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
10: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
0: And of course, we are here to spread the word and spread the music also. This was another song that came up. Thank you to our listeners who are so actively participating. Ye gana hai, Nazar ke saamne. Main gaati nahi hu, main bajai deti hu yaar gaane ko.

गाइज, एक और रिक्वेस्ट आई थी. दिस सॉन्ग इज कॉल्ड गोरे रंग का जमाना, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल. तो मैंने उनको ये बोला कि भाई गोरे रंग का जमाना वैसे अभी थोड़ा वैसे मैंने ये वाला गाना तो नहीं सुना था पहले. ये अली हैदर का गाना है. एंड इफ यू डोंट नो हु अली हैदर इज, अली हैदर वॉज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट हु बिकेम सिग्निफिकेंटली पॉपुलर इन द लेट 90s. उनका वो गाना बड़ा पॉपुलर था इंडिया में, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्लेदारेरा और मेरे यार, वो गाना याद है ना, ही प्लेड गिटार एंड ऑल दैट. ये गाना मुझे तो याद नहीं है बट हमारे लिसनर को याद है, तो वो कह रहे थे इंडिया में भी बड़ा पॉपुलर हुआ था. तो इसीलिए आई प्ले अ लिटिल बिट ऑफ दैट सॉन्ग. लेकिन इस चीज़ से पता है मुझे ये एक चीज़, वो एक याद आई कि जो टाइटल में लिखा हुआ था, गोरे रंग का जमाना कभी ना होगा पुराना. भाई आई वॉन्ट टू से दिस बिकॉज मैंने उनको बोला, हमारे लिसनर को, मैंने कहा भाई गोरे रंग का जमाना थोड़ा पुराना तो हो चुका है, बिकॉज नाउ हॉलीवुड इज ऑल अबाउट द डार्क एंड द डस्टी ब्यूटी, स्पेशली आफ्टर, यू नो, आई फॉरगॉट दैट एक्ट्रेस नेम हु वॉज इन ब्रिजर्टन, आफ्टर हर एंड मैत्री, क्या नाम है उनका, शी हैड द शो कॉल्ड नेवर हैव आई एवर एंड देन शी रिसेंटली डिड अ मूवी ऑल्सो. तो भाई अ लॉट ऑफ माई डार्क एंड डस्टी डस्की ब्यूटीज आर, यू नो, काइंड ऑफ मेकिंग वेव्स इन द हॉलीवुड एंड पीपल आर लाइकिंग दैट रियली नाइस ब्राउन टैंड स्किन. तो थोड़ा पुराना तो हो चुका है. तो उन्होंने बोला कि भाई उतना नहीं पुराना हुआ है, चाहे इवन इफ वी प्रेफर लाइक डार्क ब्यूटीज नाउ, लेकिन एवरीबडी इज स्टिल गोना लव अ गोरा गोरा. मैंने कहा वो तो खैर वॉट कैन वी डू, डीप रूटेड कॉलोनाइजेशन इज इन आर हेड, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, वो तो हम में है, बट वी ग्लोरिफाई एवरीथिंग गोरा गोरा. हाउ एवर लेट्स इग्नोर दैट, वो बात की बात है, वो थोड़ी सोशियोलॉजी की बात हो गई, हम सिर्फ गाने इंजॉय करते हैं. क्यों?

Oh, that was interesting. By the way, वो that was a part of the song. मैं जो गाना बजा रही थी ना, उसके एंड में ये पता नहीं कहाँ से गाना बज गया अपने आप. या तो किसी ने मेरा सिस्टम हैक कर लिया, या फिर आई डोंट नो वॉट हैपन्ड, बट आई डिड नॉट प्ले दैट सॉन्ग. वो गाने के एंड में किसी ने वैसे ही लगा दिया. भाई सब अपनी सेल्फ प्रमोशन भी करते हैं, वाई नॉट, करना भी चाहिए. तो गाइज, ये लास्ट सॉन्ग जो रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद वी आर गोना गेट गोइंग विद आवर डिस्कशन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे. सो एंजॉय दिस वन. दिस वन गोज आउट टू जिमरान फॉर रिक्वेस्टिंग घर नहीं जाना फ्रॉम द मूवी गुमराह. भाई हमें भी गुमराह नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, हम तो सीधे रास्ते पे जाते हैं.

भाई ये धुन सुन के अगर आपके अंदर भी एनर्जी आ गई, बिकॉज वी ऑल नो दीज लाइक एवरग्रीन 90s सॉन्ग्स, एंड यू वंडरिंग कि आई विश मेरे बिजनेस में भी ऐसी एनर्जी होती, देन यू नीड टू रीच आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास बिजनेस ओनर्स. इफ यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, देन रीच आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी, बिकॉज दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेस इन 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com.

गाइज आपको पता है ना, सोनू निगम का कॉन्सर्ट इस सैटरडे है, तो अगर ये वाला मिस हो गया तो आई डोंट नो व्हेन सोनू निगम इज कमिंग नेक्स्ट, बिकॉज दीज आर्टिस्ट डोंट कम एवरी ईयर. सो यू मेक श्योर दैट यू गो एंड गेट योर टिकट्स. आई थिंक देर आर स्टिल वेरी फ्यू टिकट्स अवेलेबल ऑन सेल, सो डेफिनेटली गो चेक इट आउट दिस सैटरडे 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. सोनू निगम विल बी प्लेइंग लाइव. ऑफकोर्स ही इज सच एन आइकॉनिक सिंगर. And he's one of, you know, not everybody, there are so many Bollywood singers, okay, pehli baat to, lekin not everybody can perform things live the way Sonu Nigam can. He has an experience of performing so much live music and he is such a master, you know. So, usse yaad aaya, ticket bhi ticket master pe available hai. And for more information, call 855-360-SHOWS. For more information, I'm going to play you a little clip of Sonu Nigam's live performance from MTV Unplugged from this movie. यार वो मूवी का नाम मैं या मुझे ना याद नहीं रहते, मुझे गाने बड़े सारे याद रहते हैं, बट आई कीप फॉरगेटिंग दीज लिटिल लिटिल इन्फॉर्मेशन. आई नीड टू हैव सम अश्वगंधा और समथिंग टू कीप माई मेमोरी स्ट्रांग. तो दिस इज अभी मुझ में कहीं वो वाला गाना है एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल रेंडिशन. इट्स अनप्लग्ड. अनप्लग्ड मतलब कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं है, कोई वॉइस में प्रोसेसिंग नहीं है, कोई रिवर्ब नहीं डाला है, कोई ऑटो ट्यून नहीं है, सब लाइव है. दिस इज फ्रॉम द एन टी वी अनप्लग्ड वर्जन फीचरिंग अ बंच ऑफ लाइव म्यूजिशंस विच आई लव.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर वाले में नवाबी स्वाद।
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
8: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
9: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
8: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
9: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
11: Beta, 95% aaye?
12: Haan, mummy.
11: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
13: मेरा?
11: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
13: वो
14: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज।

0: हेटेड
1: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

भाई पहली बार जब आपने मेरी आवाज सुनी आप सबको पसंद आ गया, तभी आई एम बैक हियर विद माय रेगुलर शो। ऐवें थोड़ी ना मैं आ गई हूँ ऐसे ही उठ के। पहले आपको याद है मेरे जो रेगुलर लिसनर्स हैं, जो शुरू से हैं, उनको पता है कि मैं रात के 10 से 12 भी एक शो होस्ट करती थी। यू नो आई हैड डन दैट फॉर लाइक अबाउट 2 वीक्स और समथिंग, एंड देन थैंक्स टू यू गाइज नाउ आई हैव ए नॉर्मल स्लॉट विच इज 7 to 10 PM एंड दैट इज वाई वी आर बैक। सो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे भी हो, आई मीन अभी तो पता नहीं कितनी बारी भी हो चुका है, लेकिन वी आर बैक गाइज। इट इज थर्सडे, मैं जाने वाली हूँ 3-day long weekend पे। नो, नॉट अ 3-day long weekend, मैं फिर भी काम करती हूँ, लेकिन मैं फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं हूँ। आई बी बैक ऑन मंडे, बट आई एम स्टिल हियर विथ यू फॉर 1 full hour। तो गाइज विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो इन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। भाई बट बिफोर वी गो इन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो वेयर वी टॉक अबाउट दिस होल वीक वी वर टॉकिंग अबाउट वेलनेस, दिस वीक वी वर टॉकिंग अबाउट हे 2026 इज अबाउट टू फिनिश एंड हैव यू गॉटन ऑन योर सो कॉल्ड कोट एंड कोट रेजोल्यूशंस और गोल्स फॉर दिस ईयर। नहीं किया है, देन यू शुड स्टार्ट डूइंग देम नाउ। वी गोना टॉक मोर अबाउट ऑल ऑफ दैट स्टफ इन दिस 1 hour। जो बचा कुचा हमारा 1 घंटा है, उसमें एड शैड बोल के बीच में जो भी जगह बचेगी उसमें आई थ्रो इन सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई थिंक यू शुड नो। आई काइंड ऑफ फॉलो इट, सो मे बी यू ऑल कैन ऑल्सो लिसन टू इट। हाउ एवर वेदर आर नॉट यू एक्सेप्ट इट, दैट्स टोटली योर चॉइस, बट यू कैन ऑलवेज लिसन, राइट? अगर आपको कुछ पसंद आया देन यू कैन अडेप्ट इट, अगर नहीं आया तो देन दैट्स ओके टू। लेकिन वो सब बोलने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्लेस लाइक अमेरिका विच इज़ यू नो यू डोंट वांट टू डील विद IRS एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। इट्स सो टैक्सिंग, कोट अन कोट टैक्सिंग, राइट? इट इज़ सो डिफिकल्ट टू डील विद ऑल ऑफ दोज सिचुएशंस इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग। इसीलिए इफ़ यू हैव अ बिजनेस और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ टैक्स एडवाइस एंड यू आर लुकिंग फॉर अकाउंटिंग, payroll, bookkeeping, business advisory services, then you need to reach out to AG Fintax. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. I'm going to play you this really cool song by this American Indian artist called Priya Raghu. And this is an English song, but bhai, isme to koot koot ke desi masala bhara hua hai. And usme, matlab sabse kehti hai, बीच बीच में एक दो हिंदी के वर्ड भी आ जाती है। आई लव योर प्यार, दिस प्यार इज डुम डुम डुम, इट्स सुपर क्यूट। इट्स लाइक कोई 90s का गाना उठा के उसमें मॉडर्न बीट्स डाल दिए हैं एंड यू नो इट्स टोटली रिलेटेबल। आई लव दिस सॉन्ग, सो आई थिंक यू गाइस शुड ऑल्सो चेक इट आउट।

Guys, we are back. This is Ippy the Hippie and you are still listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. तो गाइज कल हमने वो पांच चीजों के बारे में बात करी थी, याद है ना आपको? दो फाइव थिंग्स दैट आई टोल्ड यू दैट यू शुड डू दिस फाइव थिंग्स वाला होमवर्क एंड यू कैन चूज एनी थ्री दैट यू वांट टू इनकॉर्पोरेट दिस ईयर बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर एंड वील डू अ चेक इन नवंबर, राइट? सो व्हाट वर दोज फाइव थिंग्स? वन, यू वर्क ऑन योर स्लीपिंग हैबिट्स, वेदर इट इज यू नीड टू हैव अ मेलाटोनिन और मैग्नीशियम और जस्ट रेगुलर रूटीन की हर रोज मैं 11 बजे सोने जाऊंगा, 12 बजे सोने जाऊंगा, वट एवर टू सेट योर सर्कैडियन रिदम, वट एवर इट इज, डू इट. नंबर टू, डू सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट एवरी सिंगल डे, वेदर इट्स 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, वट एवर स्ट्राइक्स योर फैंसी, बट डू सम मूवमेंट. चाहे आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जिम जाके लिफ्ट कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, डू समथिंग. नंबर थ्री, फिगर आउट योर फाइनेंस, समथिंग नोन एज ऑटोमेटिक मनी. अपनी सेविंग्स ऑटोमेट कर दो. हमेशा ये पहले ही डिसाइड कर लो सैलरी आते कि सैलरी में से 5% मुझे सेव करना है. चाहे जितनी भी आपकी सैलरी हो, $1,000 की सैलरी हो, इफ़ यू आर स्टूडेंट्स देन शायद आपको पूरे महीने में सिर्फ $800 या $1,000 ही मिलेंगे. आई हैव बीन देयर, आई नो इट. सो देन 5% ऑफ दैट इज प्रोबेबली लाइक आई डोंट नो लाइक $40, $50. जस्ट सेव इट. ओके, इफ यू आर मेकिंग $2,000, सेव $200. इफ यू आर मेकिंग $5,000, सेव $300, $400, $500, वट एवर इट इज. Just do something, okay? Number four, learn something new every single day. Either it is 5 minutes of like a self-help book, maybe learning how to handle emotions, maybe learning how to drive better, maybe learning how to cook, maybe learning how to relax your mind when you're in stress, because we all have been in those situations, right? So learn something new, maybe learning how to invest, I don't know, whatever. But learn something new every single day. Spend 5 or 10 minutes. Just spend that much time. And you will thank me later. I promise you. And you can keep continuing that if you want, by the way. I've done it. Okay? And then reflect. Every week, just reflect on one thing that you did. Either reflect on God, which is great. I mean, if you are spiritual and religious like that, sure, you can do that. Otherwise, reflect on your own actions. What you did last week, if you can do that, just think about it. Did you really need to, I don't know, snap at your coworker for something that they did? I don't know, something random, right? You probably didn't need to do, you could have handled it better, you know, something like that. So think about all those things and aage badhte hain, theek hai? Today we are going to talk about what are the people, who are those people who actually succeed maybe in their late, not late 40s, but like early 40s, in their 40s, let's just say that. We're going to talk about what are the things which actually matter, and let's listen to this one song and then we'll do it after the song.

भाई लबों को, लबों से वगैरह, वो तो रोमांटिक सिचुएशन में था, लेकिन पता क्या चीज़ जरूरी है लबों पे लाना? अपने दोस्तों के लिए प्यार, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है? इफ़ यू हैव अ फ्रेंडशिप, प्रॉमिस मी दिस दैट यू गोना रीच आउट टू योर फ्रेंड्स दिस वीकेंड. क्योंकि कई बार क्या होता है, यू हैव टू सी, फ्रेंडशिप भी वैसी होती है रिलेशनशिप की तरह. यू हैव टू मेक द एफर्ट, यू हैव टू ट्रीट फ्रेंडशिप लाइक अ हैबिट, नॉट अ मूड. आज मूड नहीं है तो आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड्स. अरे यार, इतना सारा ऑफिस का काम है, मील प्रेप करना है, ऑल दैट. ट्रस्ट मी, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन. बट यू नो, यू हैव टू मेक दैट एफर्ट, बिकॉज बाई द एंड ऑफ इट यू विल बी लाइक, यू वॉन्ट इवन रियलाइज वेन यू हिट 55 एंड देन यू हैव नोबडी अराउंड यू. यू विल बी अलोन इन जस्ट वर्किंग, गोइंग टू ऑफिस, कमिंग बैक. मे बी इफ यू गेट मैरिड एंड यू हैव किड्स, ग्रेट. लेकिन गिवन द करंट कंडीशन ऑफ ऑल माई मिलेनियल्स, आई नो अ लॉट ऑफ यू आर सिंगल, आई नो अ लॉट ऑफ यू आर जस्ट काइंड ऑफ हैंगिंग देयर बाय देमसेल्व्स, एंड दैट्स ओके. वी आर ऑल इन द सेम बोट माई फ्रेंड, डोंट वरी अबाउट इट. तो उसमें क्या रहता है कि इफ यू लुक एट 10 ईयर्स डाउन द लाइन, इट इज द फ्रेंडशिप्स दैट आर गोइंग टू बिकम योर सपोर्ट सिस्टम. सो यू हैव टू ट्रीट योर फ्रेंडशिप लाइक अ हैबिट, नॉट अ मूड. ओके, पुट इट इन द कैलेंडर कि हर महीने आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स. जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, या तो उनसे आप मीट करो, या हर महीने यू डू अ ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल इफ यू गाइज आर लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर यू नो लाइक अ मंथली डिनर इफ दे आर ऑल लोकल, दैट्स ग्रेट. ओके, इफ इट्स नॉट शेड्यूल्ड देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, सो इफ इट्स नॉट शेड्यूल्ड देन इन दिस डेकेड इट्स प्रॉबेबली नेवर गोना हैपन. आज के ज़माने में यू हैव टू पुट इट इन द कैलेंडर, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू डू दैट. देन द नंबर सेकेंड थिंग इज यू लेट गो ऑफ योर ईगो. यार कई बार क्या होता है ना, फ्रेंडशिप्स में भी हमारी ईगो बीच में आ जाती है. हम सोचते हैं कि मैं क्यों हर बार फर्स्ट टाइम रीच आउट करूंगा, वो भी तो कभी मुझे फर्स्ट टाइम रीच आउट कर सकता है, वाई शुड आई बी द वन रीचिंग आउट. बट यार, फ्रेंडशिप्स में ईगो नहीं आती. चलो ठीक है, अब इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप और वट एवर, श्योर, आई एम श्योर दैट मेक्स अ डिफरेंस. बट यू नो, फ्रेंडशिप्स में यू डोंट वॉन्ट टू बिल्ड अ वॉल लाइक दैट. यू डोंट वॉन्ट टू बिल्ड एन ईगो वॉल. बी द फर्स्ट पर्सन हु रीचेस आउट. कई बार क्या होता है, हम इसी सोच में रह जाते हैं कि अरे पिछली बार तो मैंने उसे बुलाया था, उसने मना कर दिया, इसीलिए मैं इस बार नहीं बुलाऊंगा. लेकिन दूसरा वाला बंदा सोच रहा है, यार पिछली बार तो मैंने मना कर दिया था, आई फील सो बैड एंड आई फील सो गिल्टी, आई विल वेट फॉर दिस पर्सन टू कॉल मी अगेन एंड देन आई विल डेफिनेटली से यस. ऐसे ही होता है. ओके, सो डोंट गेट इन दैट डिलेमा, जस्ट मेक द कॉल. देन उसके बाद की बात है, हम आगे करते हैं, एक गाना सुनते हैं. सिंस हम लोग बात कर रहे थे डेकेड के बारे में, मुझे, आई एम गेटिंग वेरी नॉस्टैल्जिक. हम बहुत सारे 90s के गाने बजा रहे थे. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट 90s का गाना.

भाई आपको ये वाली मूवी याद है, दिस इज ऑफ कोर्स द सीरीज ऑफ खिलाड़ीज, द मूवीज दैट अक्षय कुमार मेड ड्यूरिंग द 90s, सारे खिलाड़ियों के खिलाड़ी, ये नॉ रेगुलर खिलाड़ी थी, ओनली वन वर्ड वाला. तो उसमें याद है इनमें इनके ग्रुप में एक बंदी का मर्डर हो जाता है, और क्यों मर्डर होता है, बिकॉज देर इज दैट विलन शाकाल मोकैम्बो इंतकाल जो भी नाम है उसका, ही इज लुकिंग फॉर समथिंग नोन एज क्रिप्टन या क्रिप्टोनाइट, क्रिप्टोनाइट ढूंढ रहा है. अब मैंने तब मूवी जब 90s में देखी, आई वॉज अ चाइल्ड और मुझे क्रिप्टोनाइट पता नहीं था. उसके बाद जब मैंने सुपरमैन देखी, भाई क्रिप्टन एंड क्रिप्टोनाइट इज रिलेटेड टू सुपरमैन्स प्लैनेट. सो आई मीन खिलाड़ी वो दिस नेक्स्ट लेवल खिलाड़ी हो गए, ही इज लुकिंग फॉर दैट एलिमेंट विच हैज लैंडेड ऑन अर्थ फ्रॉम सुपरमैन्स प्लैनेट. इज दैट अमेजिंग?

भाई क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीकेंड पे लंच बफे जरूर होगा एट द फ्लेवर लाउंज। दे हैव माउथ वाटरिंग डिलिशियस लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल फ्रेश फ्लेवर्स एंड सो मच मोर दैट यू वांट टू गोना कीप गोइंग बैक अगेन एंड अगेन। ओके, इट्स ओनली फॉर जस्ट 24.99, ओनली 24.99 ओनली एट द फ्लेवर लाउंज इन टेक्सास। Enjoy the buffet Saturday or Sunday, go from 12 p.m. to 3 p.m. Okay, don't forget about it.

पता है और क्या होगा? और ये होगा कि अगर आपने अपने इवेंट्स प्लान करें और सब खुद कर रहे हो DIY, विच साउंड लाइक रियली अमेजिंग बाय द वे, बट ट्रस्ट मी इट्स सो मच वर्क, देन क्या होगा, आप थक जाओगे और अपनी खुद की पार्टी खुद ही नहीं एंजॉय कर पाओगे. इसीलिए यू नीड टू रीच आउट टू विनेसा इवेंट्स, वेदर यू आर प्लानिंग अ ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग, स्पेशल सेलिब्रेशन. विनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर, चाहे वो डेकोर हो, वेन्यू हो, केटरिंग हो, फोटोग्राफी हो, कुछ भी हो. कॉल हरी बसेरा @ 4694428770. यही होगा.

गाइस, जैसे हम बोल रहे थे, व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली डू टू मेक थिंग्स बेटर फॉर योर सेल्फ, स्पेशली इफ यू आर इन योर 30s. नाउ हमने ये तो बोल दिया फ्रेंडशिप्स के बारे में. नाउ व्हाट अबाउट द पार्टनर? एंड आई नो आई लव टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई शो मोस्टली, राइट? मोस्टली वी टॉक अबाउट लव, डेटिंग, रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह. सो वेन यू आर इन योर 30s, कई बार क्या होता है ना, आप अपने आस पास के फ्रेंड्स को देख रहे हो, एवरी वन इज गेटिंग मैरिड, देर ऑल हैविंग किड्स एंड ऑल दैट, एंड अंदर से ना थोड़ी फोमो हो जाती है. एंड ऑफकोर्स द मिलेनियल इन मी, वी ऑल यूज द वर्ड फोमो एंड योलो एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लोल. तो जो माई ओल्डर ऑडियंस जो हैं, हु डोंट नो वॉट फोमो मीन्स, एंड ऑल्सो माई न्यूअर यंगर जेंजी ऑडियंस, यू ऑल्सो प्रॉबली डोंट नो वॉट इट मीन्स बिकॉज इट्स सच अ मिलेनियल थिंग. फोमो इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो इफ़ यू डोंट नो, दैट्स वॉट इट इज़. अगर आपको अपने आस पास का सोशल सर्कल देख के लग रहा है, अरे यार इसका तो घर बन गया, फैमिली बन गई, दो बच्चे हो गए, गाड़ी हो गई, बीवी हो गई, दे लुक सो हैप्पी टुगेदर, मेरा क्यों नहीं हो रहा, जल्दबाजी में जाके आप किसी से भी शादी कर लेते हो. एंड आई नो सो मेनी पीपल हैव डन दैट. लेकिन एक साल के अंदर अंदर उनका या तो डिवोर्स हो जाता है, या कुछ हो जाता है, समबडी इज चीटिंग ऑन समवन, या द रिलेशनशिप जस्ट फॉल्स अपार्ट, या वट एवर, यू नो, दे इधर स्टार्ट getting into like these random situations, randomly dating every third person that shows up on their dating app, ya phir they get into this arranged marriage situation, usme bhi they jump into it literally, ek mahina date karke, not even proper dating, ek mahina aap unse meet cheat karke and then you just go ahead. So ye wali cheeze bahut hoti hai. So by your 30s, you know, you should at least have the minimum you should have for yourself, that you should do for yourself is, I don't mean have a checklist, but at least have those basic standards that need to be met, okay? Ask yourself, and I don't mean like, does this person make 100K a year? Or does this person dress well and all of that? Yes, those are some very important things, by the way, which if it is important for you, because marriage is not just about love and, you know, not just that. But it's also marriage is a social contract. It's a contract by the end of it, you know. So you have to go with that presumption. So ask yourself, does this person make me feel better? Does this person make me better? Does this person make me calmer, braver? Or does this person gives me anxiety? Uski shakal dekhte hi aapko lag raha hai, oh my God, he's going to start judging me, all of that thing, okay? Do we want the same big plans, like long-term goals? Meaning whether or not you want kids, no kids, these are the questions you should ask yourself. Not like, अरे इसको चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, नहीं नहीं, not like that. The bigger questions, where do you want to live? Do you see yourself living in New York or do you see yourself living in Dallas? How to handle money? What are their spending habits? Okay, this person likes to splurge on Louis Vuitton bags and all the fancy designer wear and everything. Whereas you, on the other hand, are just driving that 10-year-old second-hand Honda still, because it still has a lot of life in it. So ask these questions. Okay, attraction gets you started, but long-term ke liye ye wale sawal bahut zaruri hai. Compatibility on the big things is what carries you through the relationship. So don't jump into a relationship or a marriage just because you're getting FOMO. And then finally, if I want to say, because I'm also in that boat with you guys, if you're single, guys, it's not really a failure. We are not living in our parents' generation anymore. We are not living in the 80s and 90s where having marriage and kids was the ultimate goal. People who are single are also very, very happy and have it all together. And that sometimes is pretty much a full life. Just because, you know, your older generation did not have it doesn't mean you can't have it. Okay, we are living in a different time. Okay, you have community, you have friends, you have your family, you have a purpose. तो आपकी शादी आपका पर्पस नहीं है, बच्चे पैदा करना आपका पर्पस नहीं है, आपकी खुशहाल जिंदगी आपका पर्पस है. थिंक अबाउट दैट. ओके, डोंट पुट योर इंटायर लाइफ ऑन होल्ड बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर जस्ट दैट वन पर्सन, दैट वन ट्विन फ्लेम या वन सोल मेट टू शो अप. एंड देन रिपेयर वॉट इज फिक्सिबल. हर चीज को, मतलब कुछ में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, डजेंट मीन, जस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन द फास्ट फूड जनरेशन डजेंट मीन द नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन इज द बेस्ट वन. You don't know. Fix
something if you can fix it. Take that from the older generation. Older generation love to fix things. And take that if you can. Okay? Let's go into a song. Agar mera mouse chal gaya toh.

गाइज इट इज़ 9:50 ऑन द क्लॉक, मतलब मेरे जाने का टाइम हो रहा है. लेकिन जाने से पहले आई एम गोना गिव यू सम वर्क प्लेस वाली एडवाइस, ओके? बिकॉज इफ यू आर इन योर 30s, 20s, 40s, वट एवर इट इज, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. सो जस्ट गेट ऑन इट. नंबर वन, गेट गुड एट समथिंग दैट इज रियली रियली हार्ड टू रिप्लेस. मतलब आप ऐसा कोई काम करो अपने ऑफिस में जो और कोई नहीं कर पाए. गेट रियली रियली रियली गुड एट दैट थिंग, ओके? समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग दैट इज इंडिस्पेंसिबल, ओके? नंबर टू, अपनी रेप्यूटेशन को अपने वॉलेट के जितना संभाल के रखो, ओके? एंड बिल्ड योर रेप्यूटेशन. यू डोंट वॉन्ट टू बी द पर्सन हु वर्क्स टिल 10 o'clock फॉर फ्री और वर्क्स टिल 10 o'clock जस्ट बिकॉज हाँ यू आर सो नाइस एंड पीपल गिव यू देयर एक्स्ट्रा होमवर्क. सारी जिंदगी यू विल बी दैट पर्सन जो आपसे काम कराते रहेंगे लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाएगा. सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ एंड लर्न हाउ टू डिमांड फॉर वॉट यू आर वर्थ एंड यू नो योर ओन वर्थ. सो यू नो सेल्फ वर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू, फाइंड मेंटर्स हु कैन रियली रियली हेल्प यू आउट. फाइंड मेंटर्स हु कैन रियली हेल्प यू आउट इन whatever career you are doing, who can, you know, give you those little tips here and there, just some things. You don't need them to be like spoon feeding you all the time, but maybe. And then number two, you can also become a mentor to someone, you know, find someone who actually needs the help that you never got when you were younger. Maybe they are going to value you as well. Okay, number four, टेक स्मार्ट risks now. आज के डे अभी टाइम है, 50 साल में आप risks नहीं ले पाओगे. तो risk जो लेना है, चाहे वो करियर चेंज हो, जॉब चेंज हो, सिटी मूव करना हो, इफ यू आर इन योर 30s एंड योर 20s, दिस इज द टाइम. वंस यू हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट आफ्टर ऑल्सो, बट इट गेट्स एक्सट्रीमली हार्ड, राइट? सो डू इट एज अर्ली एज यू कैन. एंड फाइनली, बीवेयर ऑफ गोल्डन हैंडकफ्स. मतलब वो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसमें कई बार कुछ गड़बड़ भी होती है. एंड यू ऑल्सो हर्ड ऑफ दैट सेइंग, नो देर इज नथिंग नोन एज फ्री लंच. वेल दैट्स वॉट वी मीन, ओके? इट इज ईजी टू से येस टू अ जॉब दैट पेज जस्ट अ टीनी बिट मोर एंड कॉस्ट लिटल मोर ऑफ योर सोल ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर अंटिल योर लाइफ स्टाइल रिक्वायर्स इट एवरी सिंगल डे. तो मतलब आप नई जॉब में ज्वाइन करोगे तो आपका जॉब वाला पहले बोलेगा, अच्छा यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द वीकेंड्स जस्ट राइट नाउ इन द बिगिनिंग एंड देन वील इवैल्यूएट एंड सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 6 months, वील सी. एंड देन उसके बाद पता चले यही आपका स्केड्यूल बन गया. देन ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर यू आर गिविंग अप योर वीकेंड, यू आर गिविंग अप योर लेट नाइट्स एंड यू आर सिटिंग इन दिस जॉब एंड वंडरिंग, एम आई बिल्डिंग समथिंग और जस्ट अर्निंग समथिंग, लाइक एम आई इवन गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ डूइंग दिस एक्स्ट्रा वर्क. So ask these questions right now while you still can. तो यही इसी से guys, मैं अपना टाटा बाय बाय करती हूँ. मैं आपसे मिलूंगी मंडे को. And stay healthy and enjoy the weekend. Do something amazing. Go for the Sonu Nigam concert. Or go to Flavor Lounge. We do so many ads for all these amazing places. मुझे तो कभी मौका नहीं मिलता जाने का. लेकिन आप ज़रूर जाइए. And then let me know how all of these places were. Okay? I will see.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: परेशानी,
1: बोल बचन का खतरा,
0: खतरा
1: बोल बचन की भाषा,
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion. Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Bindas Bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
2: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।

0: तुम्हारे। एंटरटेनमेंट से करते मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: निशान हे फ्रंटियर पे तेरे आया है जवान।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax।
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा
3: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Beta, 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
6: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonasia, 104.9 FM.

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
1: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
0: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
4: Your honor, hazaron logon ne ad dekha.
3: Miss clicks?
5: 100 logon ne click bhi kiya.
3: Customers kitne aaye?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
5: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
7: Sathiya. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना
0: है। अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।
1: अजबोतला

Storming into a million hands. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो, लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

0: बोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुनी रानिये नी ठाट बाट देख किंग दे तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंह दे।

0: जितना प्यार से तू उतना ही अकड़।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
2: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच AI रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो Measure calls, bookings, redemptions, and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI. Turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
4: अजी सुनते हो
5: अजी नहीं एजी सुनते हैं
6: The OG of tax planning AG Fintax सुनेंगे आपके financial concerns देंगे smart solutions every Friday 9:45 AM only on Phanasia Radio.
2: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@phanasia.net.
7: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Phanasia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे ब्याह किया, हमसे कतई प्यार नहीं था।

0: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
1: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
0: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
1: पता नहीं।
2: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। Introducing Smart Reach AI, powered by real foot traffic attribution. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
0: Ab hui na smart marketing.
2: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
3: Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
4: Sathiya.
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
8: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के It's okay, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
1: अच्छा सुना सुना?
0: हाँ वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी,
1: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
8: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
10: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
8: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
10: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
9: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
11: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
12: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
13: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
14: डील कहाँ?
13: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
14: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैकजैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट. एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.
13: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
16: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
13: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
16: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
17: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, Our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
19: Ladies and gentlemen, welcome to the show and let's get started with it on this lovely Friday morning. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko insaniyat को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड ऑन दिस फाइनल डे ऑफ द गणेश उत्सव. द लॉर्ड नाइदर अराइव्स नो लीव्स, ही हैज एग्जिस्टेड बिफोर टाइम एंड विल एग्जिस्ट बियॉन्ड. गणेश उत्सव, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज सिम्बॉलिक ऑफ आवर लाइफ. वी अराइव, we celebrate, and then we merge into the elements.

0: Llevo 20 años en este negocio y no van a tener ningún problema.
1: ¿Es que push time qué tal lo queda?
2: ¿Y cuánto tiempo se tarda en entregarlos?
0: Una semana.
2: In one week, ready.
3: Take
1: care of yourself, yeah? Okay.
3: Bye-bye. बस एक हफ्ते में, एक हफ्ते में तेरा पासपोर्ट लेके आता हूँ मैं, बस एक हफ्ता संभाल ले तू, उसके बाद सारी दुनिया तेरी, जहाँ जाना है जा।
4: That track, ladies and gentlemen, was from the movie called Kites. Hrithik Roshan and Barbara Mori in that. Plenty more music all lined up for you. And sometimes it's just a song you listen to that gets you ready to take on the day today.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
6: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: We need to talk.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing. It's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
9: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
13: लैपटॉप में।
12: इन्वेस्टमेंट?
13: गूगल ड्राइव।
12: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
13: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
12: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
9: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
14: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
9: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
15: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
16: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है।
15: कैसे?
16: Page 3 eatery?
15: No, not another restaurant again.
16: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
15: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं
9: पेज थ्री ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट।
17: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
18: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
19: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
19: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: Hello Texas Parivar, क्या आपको पता है, there is a first time home buyer program
20: under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call Kijiye Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
21: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: I will have the world news coming up for you shortly.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉपटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉपटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: अरे यार, घर मिल गया।
10: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
11: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
10: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
11: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
19: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
19: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: You hear?
1: Bella Ramsey was born on today's date in 2003 in Nottingham, England. The English actress with a penchant for portraying strong-willed young women, best known for her breakout role in Game of Thrones.
2: Rob is gone, but House Stark is not, and it needs your support now more than ever. I've come.
1: Wangari Maathai died on today's date in 2011 in Nairobi, Kenyan politician and environment activist who was awarded the 2004 Nobel Prize for Peace and became the first black African woman to win a Nobel Prize. Arnold Palmer, who used an unorthodox swing and an aggressive approach to become one of the golf's most successful and well-liked stars, died at the age of 87 on today's date. In 2016, 10 years ago, Arnold Palmer. And those, ladies and gentlemen, were some stories from the annals of history that happened on the 25th of September. That is today's date.
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: Aji, sunte ho?
13: Aji, nahi. Aji, sunte hain.
9: The OG of tax planning, AG FinTax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. Only on Funasia Radio.
14: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
15: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
16: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
17: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
16: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
18: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
16: The One, Force of the Forest.
19: A Hindi mythological folk thriller. Directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
16: On 25th September, in cinemas near you.

8 minutes past 10 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. A very, very, very good morning to you, DFW and EP. Friday hai. This is Rumita and welcome to Gup Shup Gully. You know, Friday ki ek अलग बॉडी लैंग्वेज होती है. इमेजिन मंडे मॉर्निंग आप जब ऑफिस एंटर करते हो, लैपटॉप, कॉफी, सीरियस फेस, और फ्राइडे सेम ऑफिस सेम लैपटॉप, बट अंदर से इंसान ऑलरेडी वीकेंड पे होता है. अराउंड 3 PM सडनली ईमेल्स भी सस्पिशियस लगने लगते हैं. यार कोई लिखे कैन वी क्विकली डिस्कस दिस? एब्सोल्यूटली नॉट. मंडे को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस बारे में, अभी तो नेवर. और इस वीकेंड तो DFW में फेस्टिवल सीजन वाली एनर्जी भी है फुल ऑन. कॉन्सर्ट्स, गरबा, प्लान्स, इवेंट्स, डिनर्स, मूवीज. सो ओपनिंग क्वेश्चन मेरी सिंपल है, इस वीकेंड आपका मूड क्या है? ऑप्शन ए, फुल सोशल, हर जगह जाना है. ऑप्शन बी, एक प्लान एनफ है. या फिर ऑप्शन सी, प्लीज मुझे घर पे छोड़ दो, मुझे ब्लैंकेट और रिमोट चाहिए. ऑनेस्टली सी वाले पीपल, आई मीन ऑप्शन सी वाले पीपल, आई रिस्पेक्ट योर क्लैरिटी. फ्राइडे ऑफिशियली इज ऑन. लेट्स गेट इनटू सम म्यूजिक एंड टशन.

फिट्स डिसाइड होता है. और फाइनली जो होता है वो है टेक आउट एंड चिल मारो घर पे विथ योर ब्लैंकेट एंड रिमोट. एग्जैक्टली वही जो थर्सडे को भी कर सकते थे. सो टेल मी, वीकेंड में प्लानर कौन है? आप हो या आपके पार्टनर है या फ्रेंड ग्रुप का वो एक इंसान जिसके बिना बाकी सब लोग घर पे बैठे ही रहेंगे. एंड प्लानर्स, टुडे आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू बिकॉज हाफ ऑफ द वर्ल्ड सोशल लाइफ इज फंक्शनिंग बिकॉज समबडी लाइक यू क्रिएटेड दैट व्हाट्सएप पोल.

0: You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. And Gupshup chal rahi hai about your weekend plan, party, movies, concert, फलाना ढिमकाना जो भी है. बट एक बात तो हम भूल ही जाते हैं यार, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करके भी वीकेंड में टाइम बिता देते हैं और उनको खुशी भी मिलती है. जैसे कृणाल जी ने अभी कॉल किया एंड शेयर किया कि वो इस वीकेंड काम करने वाले हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वर्क सो हार्ड एंड डज एंजॉय वर्किंग हार्ड ऑन वीकेंड एज वेल. सो ऐसे आप भी हो क्या इस कैटेगरी में? बताओ बताओ. स्टूडियो फोन करो और 9722355555. आई एम हियर सिटिंग फॉर यू फॉर द गपशप.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
6: ये तारा वो तारा हर तारा.
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
5: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any 2 entrees and get 1 appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
9: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
10: कितनी लंबी लिस्ट है?
9: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
10: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
11: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLworldwide.com.
12: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है.
12: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
13: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: हीरो और हीरोइन अगर पेरिस में ऐसे बेफिक्रे उड़ते रहे उड़ते, मतलब वो मूवीज में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ जब हिट करती है ना तब मतलब सही हिट करती है। एंड आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेफिक्रे वाले एक्सीडेंट्स जो इधर उधर होते रहते हैं। और अगर मानो अगर ऐसा हो भी गया तो डोंट वरी, पैनिक मत करो, डॉक्टर या पुलिस को बुलाने के साथ साथ अपने साथ एक नाम और भी सेव कर लो बिकॉज दैट इज वॉट गोइंग टू हेल्प यू आफ्टर दिस एक्सीडेंट, यू नो सियापा गेट्स ओवर। एंड दैट वॉट लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा और द नेम अटर्नी ओमर ख्वाजा। बिकॉज इफ यू एवर गेट इंजर्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और इवन इफ यू हैव अ स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट एनी वेयर, देन यू शुड बी फोकस्ड ऑन हीलिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ दिस ट्रामा वाइल अटर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट फॉर यू। एंड the best part about attorney Omar Khwaja or his office is that you don't need to pay anything to him until he wins your case and gets you the compensation that you deserve. So call him at 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. That's the name, what you need to remember after your accident.
1: Music.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita. Baat chal rahi about your weekend and its planning. So DFW mein officially, it's that season again, that festive season again, jahan pe the concerts are, very frequent. Will be frequent, and tomorrow we have a concert jiske baare mein I'll be talking about it in some course of time. But notice karo ki it's already the festive season and garba season bhi hai, and I love this fact ki how optimistic hum events ke pehle ho jate hai. Beautiful outfit, jewelry, hair, pictures, matlab aaj to full on hum tashan mein hi rahenge. And cut to 40 minutes later, yaar pani kahan hai? Ek ghante baad apne outfit suggest karna, because you are having a lifetime fun in the concerts, in the events. Apne dupatta एडजस्ट कर लो यार 17 बार, अपने शूज को क्वेश्चन कर लो यार क्यों इतने दुख रहे हो, आज तो पार्टी करनी है, आज तो डांस करना है, और हेयर का ओरिजिनल प्लान ऑफिशियली कैंसिल हो जाता है. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू डिस्कवर द मसल्स जो कि आपको कभी लगता ही नहीं था कि यार ये भी एग्जिस्ट करते. ये शोल्डर क्यों हर्ट कर रहा है, मैं तो पैर से डांस कर रही थी. बट दैट्स ऑल्सो द you know, this concert या festive season का fun. You get ready, meet people, dance, eat and complain about your feet while saying, yeah, next weekend फिर चले. So, मुझे बताओ DFW वालो, what are you? Proper dance वाले, steps वाले with the, or the disciplined dancer, या फिर circle में किसी confident person को देख के बस उसको ही कॉपी कर लेते हो, या फिर वो एक थर्ड कैटेगरी भी होता है जो पार्टीज में फूड स्टॉल के पास खड़े होकर डांसर्स को अप्रिशिएट करने वाले होते. नो जजमेंट, दैट्स अ पार्टिसिपेशन टू. लेट्स कीप दिस एनर्जी गोइंग एंड दिस फेस्टिव गरबा कॉन्सर्ट इवेंट फन लाइव आप इंजॉय करो. बात करेंगे उस बारे में, फिलहाल म्यूजिक को एंजॉय करो.

0: That was Siddharth Malhotra and Tamanna Bharia from the movie The One Force of the Forest, which is releasing today. That is one fresh theatrical release of this Friday. You're listening to Gup Shup Gali with me, Ramita. And One ke baare mein baat kare, to it is a story which brings folklore, faith and ek ancient forest, ya fir The One, which brings this conflict with development. So, this isn't your standard urban rom-com Friday release. यहाँ पे थोड़ा ट्रेलर देख के मुझे थोड़ा सा सिमिलैरिटी विद द फिल्म कंतारा लगा. बट अगेन लेट्स वेट एंड वॉच हाउ दिस मूवी इज गोइंग टू बी एंड व्हाट फ्रेश थिंग और फ्रेश प्लॉट और फ्रेश ट्विस्ट दिस मूवी इज गोइंग टू ब्रिंग दिस फ्राइडे. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM. एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
5: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
4: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
6: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
4: The One Force of the Forest,
7: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
4: On 25th September in cinemas near you.
8: Beta, 95% aaye?
9: Haan mummy.
8: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
10: Mera?
8: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
10: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो.
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
16: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. Sadia!
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज
9: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

12 महीने का तो पता नहीं, बट हर महीने अगर आप अपने लिए $85 साइड पर रख दो, और अपने लिए मतलब अपने हेल्थ के लिए, तो उसके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। उसके साथ हो सकता है आपका प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ। और ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, क्योंकि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में दे हैव दिस फैसिलिटी विच इज पैशन हेल्थ डायरेक्ट। यानी कि अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ आपके नेटवर्क से बाहर है, देन डेफिनेटली यू कैन अवेल दिस पैशन हेल्थ डायरेक्ट सर्विस दैट दे प्रोवाइड फॉर $85 अ मंथ। एंड लेट मी टेल यू, दिस प्रोग्राम इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस। यहां पे एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस भी लागू है। तो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 और यू कैन सिंपली विजिट passionhealthphysicians.com।

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gapshap Gali with me, Ramita. It's 11:07 by the studio clock. Aaj hai 25th of September and it's a Friday. Aur agar 26th of September, yani ki kal aap kuch plan कर रहे थे, कर रहे हो, करेंगे, अगर करेंगे, फ्यूचर टेंस का स्कोप अभी भी ओपन है, देन लेट मी टेल यू, और अगर आपको अभी तक नहीं पता है, दैट सोनू निगम विल बी कमिंग लाइव इन कॉन्सर्ट टुमारो, दैट इज 26th ऑफ सितंबर एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. 8:30 PM द कॉन्सर्ट स्टार्ट एंड वही आइकॉनिक आवाज विथ ऑल योर फेवरेट सॉन्ग्स एंड गेट ready for that unforgettable night of music revolution by Sonu Nigam. तो जैसे कि मैंने कहा, अगर plan बना नहीं है और बन भी चुका है यार, तो leave everything, क्योंकि Sonu Nigam हर weekend आपके शहर नहीं आएंगे. The tickets are still available in Ticketmaster, and if you need more information regarding this event, then call 855-360-SHOWS. That is 855-360-SHOWS. Sonu Nigam live in concert, the revolution, and is इवेंट के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है फनीशा नेटवर्क.

15 minutes past 11 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. And this hour, yani ke ab se leke, jab tak main aapke saath hu, saare 12 baje tak, I'll be your दिल की जो डिलेमास है वो सारे उनके पिटारास आप खोल सकते हो. दैट मीन्स आई विल बी योर एग्नी आंट. इतने अंग्रेजी वाले नाम नहीं चलेंगे. आई विल सिंपली पुट इट एज इन कि मैं हूं आपका कंधा. यानी कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करो. प्रॉब्लम वैसे होनी चाहिए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड के लोन्स बहुत बढ़ गए हैं, रमिता मैं क्या करूं, उसका आंसर मेरे पास नहीं है. बट लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो नो यू नो कन्फ्यूजिंग है जो, वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो. और अगर मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम्स मेरे वाले शेयर करने लगूँ तो पूरा फनीशा पूरा दिन निकल जाएगा अगर मैं बोलने लगी. बट एनीवेज, बात और मौके की बात आपकी है. आपका सोल्यूशन, आपका कंधा मैं हूँ. सो स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी वैसी वाली, रेगुलर वाली, छोटी मोटी, बट अभी आपको करंटली परेशान कर रही है, कॉल करो, शेयर करो. क्योंकि यार प्रॉब्लम बांटने से

You're listening to 104.9 FM Funny Show Radio. This is Gup Shup Gully with me, Rumita. और चल रहा है दिल का डिलेमा सेगमेंट, जहां पे वो सारे प्रॉब्लम्स जो असल में छोटी सी होती है, बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने से और भी बड़ी हो जाती है. जैसे कि अभी भी एक लिसनर ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि रमिता, मेरी क्लोज फ्रेंड दूसरे सिटी में रहती है, जब भी डालस आती है ऑटोमेटिकली अज्यूम करती है कि मेरे घर रुकेगी. अरे यार, दोस्त के शहर आयो, ऑब्वियसली दोस्त के घर ही रुकोगे. आई जेन्युइनली डू नॉट माइंड, आई मीन शी इज अ वेरी गुड होस्ट एज पर हर एंड शी होस्ट्स हर फ्रेंड, बट एवरी विजिट बिकम्स 3 to 4 days. उसके साथ साथ होता है मील्स, एयरपोर्ट पिकअप, प्लान, एवरीथिंग. ये सारी बातें इज वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल, बट हियर इज द प्रॉब्लम. लिसनर ने कहा कि रिसेंटली वो उनके दोस्त के शहर घूमने गई थी एंड कैजुअली यही बोल दिया था कि यार मैं तेरे शहर पे हूँ. सो ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऑब्वियसली ये लोग अपने दोस्त के घर जाके रुकेंगे, बट दोस्त ने किया कहानी में ट्विस्ट. दोस्त ने इमीडिएटली सजेस्ट कर दिया एक होटल जो कि उनके घर के नियर बाई है, एंड दैट वाज एन आउच मोमेंट. अभी ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. आई मीन लिसनर ने कहा कि मुझे होटल से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस डबल स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम है. एंड यस, दैट इज द एक्चुअल इशू, बिकॉज फ्रेंडशिप में अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए यार. मैंने 3 dinners दिए तो तुम 3 dinners दो, ये क्या बात हुई? अगर मेरा घर ऑटोमेटिकली तुम्हारा घर है तो वो वाइजी वर्षा क्यों नहीं होता? अगर मैं तुम्हारे घर में रहूं, मैं तुम्हारे शहर में जाऊं, तो तुम्हारा होटल, आई मीन तुम्हारा घर मेरा घर होटल, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है. सो वॉट शुड शी डू नेक्स्ट टाइम अगर दोस्त हमारे शहर में आए? मुझे, मेरा मानना है दिस अननोन लिसनर, बिकॉज अनोनिमस लिसनर, बिकॉज उन्होंने अपना नाम नहीं कहा, तो आप अगर मुझे सुन रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू होस्ट हर नॉर्मली एंड पोलाइटली से कि आवर नॉर्मल जैसा है सिचुएशन उसी को बरकरार रखो, या तो फिर आप पोलाइटली आप भी ये बोलो कि इस वीकेंड हम होस्ट नहीं कर सकते, आप भी उन्हें सम होटल ऑप्शंस भेज ही दो. ये पेटी है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है इट इज सिंपली मैचिंग द बाउंड्री द फ्रेंड हैज क्रिएटेड हर सेल्फ और हिम सेल्फ. DFW, आप अगर इस जगह होते तो क्या करते? फोन का नंबर इज 9722355555. अगर आपको कोई और सोल्यूशन लगता है तो मुझे बताओ, शायद मैं उन्हें शेयर करूं और उनको कोई और हल मिल जाए.

0: हर एक फ्रेंड कमी ना होता है कि नहीं होता है वो नहीं पता, बट आई लव द फैक्ट कि इस ओपिनियन में आपके भी ओपिनियंस है. कीप लिसनिंग बिकॉज़ आई बी बैक विथ मोर डिलेमास एंड सॉल्यूशंस. स्टे ट्यून्ड.
1: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com.
3: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Wait a minute. You.
8: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
9: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
10: लैपटॉप में.
9: इन्वेस्टमेंट?
10: गूगल ड्राइव.
9: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
10: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
9: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
8: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
11: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
8: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
16: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
18: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
19: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर.

सिर्फ नच पंजाब नहीं यार, पूरे DFW को नचाते हैं यार। वी आर द फन एशिया नेटवर्क 104.9 FM। टुडे इज फ्राइडे, या फिर फ्राइडे, सितंबर 25th है आज की तारीख, और आप सुन रहे हैं गपशप गली विथ मी रमिता। चल रहा है दिल का डिलेमा सेगमेंट। यहाँ पे कॉलर्स अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं और हम सब मिलके उनके सोल्यूशंस निकालते हैं। तो इस कॉलर ने जो जिन्होंने फोन किया था, उनकी बातें सुन के इट एक्चुअली मेड मी लव, बिकॉज आई कैन एक्चुअली पिक्चर इट माई सेल्फ। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड उनके घर के बहुत ही पास रहते हैं। ही इज़ अ वेरी लवली पर्सन, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज में है, दैट ही डजंट अंडरस्टैंड डिपार्चर। यानी कि वो अगर 7 बजे घर आएंगे तो कॉफ़ी चाय वगैरह स्नैक्स तो हो गया, मतलब डिनर का प्लान भी बन गया, गपशप उनकी भी चलती रही, डिनर के बाद डिज़र्ट का प्लान भी प्लान चलता गया, कन्वर्सेशन भी नहीं रुकी, और ऐसे करते करते 12:30 एक बज जाते। तो उनका ये कहना है कि यार बच्चे सो जाते हैं, मैं यौन करने लगती हूँ, और रात के 1 बजे तक अगर उनकी गपशप चलती रही तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो यही चलता है कि अगले दिन सुबह उठना है, बच्चों को स्कूल की तैयारी करनी होती है। बट ये उनको क्यों नहीं समझ आती है, उनको उनके घर क्यों नहीं जाना होता है। एंड आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और लिसनर ये भी कहते हैं कि द हस्बैंड विल नेवर टेल हिम इट्स लेट, बिकॉज वही है ना, यार है मेरा। तो वो मेरी जो लिसनर है वो विलन बन जाती है कि हस्बैंड कुछ नहीं कहता, वो रूड साउंड करती है या पोट्रेड होती है। एक्सक्यूज मी, देर इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। सो हियर्स अ टुडेज एटिकेट क्वेश्चन टू यू DFW। अगर आपके घर, या फिर लेट्स थिंक द अदर वे राउंड फर्स्ट, इफ यू आर अ गेस्ट एट समबडीज होम, इज इट द होस्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू दैट इट्स टाइम टू लीव, या फिर शुड एन अडल्ट बी एबल टू रीड द रूम? और अगर आप दूसरी तरफ हो, इफ इज योर फ्रेंड, इज इट योर जॉब टू मैनेज द एग्जिट, या फिर करना क्या चाहिए? मेरा वोट, चलिए आपके वोट सुनने के बाद मैं बताती हूँ।

All right, you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gup Shup Gali, and Gup Shup is very interesting ho chuki hai because callers are suggesting me different angles and different solutions to this problem. Sunita ne call kiya aur unhone bataya ki yaar aap un listener ko kaho kya agar, and that anonymous listener, if you're listening to me right now, Sunita has a solution ki aap स्मार्टली सब कुछ अरेंजमेंट सेटल करके आप खुद सोने चले जाओ. लेट द हस्बैंड डील विद द फ्रेंड एंड उन्हें गपशप चलाने दो. इससे पता चलेगा कि यार दोस्त को भी वो सिग्नल मिल जाएगा या फिर हस्बैंड को भी रियलाइज हो कि कब तक जगूंगा यार, ये कब जाएगा. तब हस्बैंड को पता चलेगा कि अकेले गपशप लड़ाने का या जगने का क्या मतलब होता है. एंड आई हैव वन इंटरेस्टिंग सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज वेल, जो देवल ने कहा या हस्बैंड और वाइफ को दोनों को कहो कि सोने की एक्टिंग करे, या कोई अगर एक भी करेगा तो भी चलेगा, उनके सामने एक्टिंग करो, दोस्त को अपने आप पता चल जाएगा. एंड आई कांट इवन इमेजिन द सिचुएशन दैट उस रूम में कैसा लगेगा कि अगर दो लोग बातें कर रहे हैं और एक बंदा सोने की एक्टिंग कर रहा है. आपको क्या लगता है? कॉल मी 9722355555 इफ यू हैव एनी मोर सोल्यूशन टू दिस, और इफ यू हैव अ ट्रिवियल प्रॉब्लम जो कि ऐसे जेनरिक बहुत छोटा है बट आपके लाइफ में अभी आपको ओवरथिंक करवा रहा है, कॉल मी एंड लेट द गपशप कंटिन्यू.

0: ऐसे मेरी वाइप वाइप वाइप वाइप वाइप वाइप वाइप ऐसे मेरी वाइप वाइप वाइप वाइप वाइप वाइप वाइप ऐसे मेरी वाइप वाइप वाइप।
1: अगर आपकी वाइब है बटर चिकन बिरयानी पनीर टिक्का या दाल मखनी वाली और इन सब डिशेस को अगर आप डिनर में एंजॉय करना चाहते हो वो भी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 5 to 8 PM बिकॉज दैट इज द फ्लेम आर विच इज राइट नाउ रनिंग। आज तो खैर फ्राइडे है, वीकेंड है, सैटरडे संडे भी बीत जाएगा, बट मंडे को अगर अचानक से ये वेलवेटी करीज और गरम गरम नान के ऊपर दाल मखनी फिरकी हुई खानी है ना, स्ट्रेट अवे गो टू तंदूरी फ्लेम विच इज लोकेटेड इन गार्लैंड। और एक चीज जो कि एक्चुअली फ्लेम आर में स्पेशल है कि आपको 5 to 8 PM तक यानी कि मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 5 to 8 PM यू विल गेट अ फ्री appetizer if you ordered any 2 entrees, yani ki order any 2 entrees and receive 1 appetizer always muft. This is Gup Shup Gali with me Ramita, jahan pe chal raha hai dil ka dilemma segment, baat karenge uske bare mein after this music.

लाइव सफारी तू खुल के जी ले। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो और लाइफ इज अ पार्टी। मेरी बात मानो, यानी कि रिमिता की बात मानो। अगले पार्टी के लिए लाइफ का पता नहीं, बट अपने आप का थोड़ा ज्वेलरी अपग्रेड कर लो, बिकॉज श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज हियर इन द मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, जहां पे दे हैव द स्टनिंग हैंड क्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड्स, पोलकी एंड बहुत कुछ। यू नो, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ शादियों के लिए नहीं, फॉर योर एवरी डे ज्वेलरीज दे हैव द स्टनिंग कलेक्शन एट श्री कृष्ण ज्वेलर्स। एंड absolutely they have these designs that suits every occasion and every style. Sri Krishna Jewelers, which is right here on the main street, that is 13145 main street in Frisco. Call them at this number 430-231-1111 for more details. Keep the gupshup going. This is Gupshup Gali with me, Ramita, jahan pe back to back do super hit tracks only on 104.9 FM Funisha Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag और ऊपर से स्ट्रेस.
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
8: ये क्या होता
9: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
12: Order. Mr. Impressions, campaign ka result.
13: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
12: Miss Clicks?
14: 100 logon ne click bhi kiya.
12: Customers kitne aaye?
15: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
16: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Fun Asia Network product.
17: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
18: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराटा चिकन टिक्का न्यू लव.
17: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
18: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
19: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
20: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
21: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
22: वी नीड टू टॉक.
23: अब क्या हुआ?
22: नथिंग, इट्स नॉट यू.
23: ओह नो,
22: इट्स द डिस्टेंस.
23: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट.
22: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स द ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन.
21: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर. सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग. योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर. सैल्स हॉट चिकन इरविंग, सेम ऑब्सेशन, लेस डिस्टेंस.
24: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
25: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
26: तुमसे मिलके दिल का है.
25: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

9 minutes past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gup Shup Gully with me, Rimita. Bahut zyada roll ho gaya na aar. Vaise it's time for the giveaway. And giveaway, jaise ki aapko pata hai, mere show mein, you win a Fun Pizza Kitchen $10 gift card. But there is a twist. Aapko movies guess karne hote with the clues and the differently explained प्लॉट्स, यानी कि एक जो कहानी है उसको मैं इधर उधर डाय बाय अप डाउन ऐसे तरोर मरोर के आपके सामने पेश करती हूँ. आपको सिर्फ उस क्लूज से या उस बैडली एक्सप्लेन्ड प्लॉट से वो मूवी गेस करना है. एंड द मूवी टुडे इज बेस्ड ऑन दिस बैडली एक्सप्लेन्ड प्लॉट. सो दिस आर्मी गाय इन हिज 40s वो बन के आता है एज अ कॉलेज स्टूडेंट. आई थिंक बॉलीवुड बफ्स को इतना ही क्लू इनफ है कि मेरे फोन लाइंस अभी रिंग करने वाले हैं. यस दे आर रिंगिंग. देखा. सो दिस आर्मी गाय इन हिज 40s डिस्गाइज़ेस हिमसेल्फ एज अ कॉलेज स्टूडेंट, डेट्स द हॉटेस्ट टीचर, और उसके फैमिली ग्रुप में उसको बाद में पता चलता है कि उसी का सौतेला भाई इज देयर. बहुत ही सिंपल है. 9722355555 इज द स्टूडियो नंबर. कॉल मी और जीत जाओ फन पिज्जा किचन से $10 गिफ्ट कार्ड आपके और आपके फैमिली के लिए यार.

एक मैं हूं कि इजी इजी क्लूज आपको दे रही हूं, देती रहती हूं, और एक आप लोग है कि कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे हैं। यार मुझे मिल गया है, आप कॉल्स करना बंद करो। द विनर इज स्वप्निल। वैसे स्वप्निल, एज आई डिस्कस्ड, बहुत ही लकी विनर है आप। आपके पहले किसी और ने जीत लिया था, एंड मैं आनंद जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतने ऑनेस्ट है, बट फिलहाल मतलब फिर भी उन्होंने ये स्पिरिट दिखाई कि मैं पहले कॉल करूंगा और सही आंसर दूंगा, मेरे से ज्यादा बॉलीवुड बफ है कौन। सो आनंद जी, थैंक यू सो मच। और ये आपको भी बता दूं कि अगर आपने एक महीने के अंदर कोई भी गिव अवे जीता है, किसी भी यू नो रेस्टोरेंट हो या कुछ भी हो, देन प्लीज गिव द मौका टू योर नेक्स्ट कॉलर। एंड थैंक यू आनंद जी, एंड कंग्रेचुलेशन स्वप्निल फॉर विनिंग दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। अगर आप कल गरबा जा रहे हो और थक जा रहे हो, ये आपके लिए एक अच्छी और एक्साइटिंग न्यूज हो सकती है, बिकॉज you know, or for all the garba nights in the city, Fun Pizza Kitchen will be open till 3 o'clock in the morning. So for all the garba nights, check out the calendar. We are not going to promote it, but if you want to try the Mexican inspired pizzas, fiesta veggies, fairy पोयो लोको और द सी फूड लोडेड सिने और कैमरॉन, जो कि उनका नया मेन्यू है, स्ट्रेट अवे हेड टू फन पिज्जा किचन। एंड Congratulations, Swapnil, again. And for you to know and for everyone to know, the correct answer was Mehuna. You're listening to Gup Shup Gully with me, Ramita, only on 104.9 FM, Funisha Radio.

एंड दैट्स अ फ्राइडेज गपशप मेरे प्यारे DFW वालों, दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय शो टुडे. वी कैन एंजॉय कीजिए. अगर रेवोल्यूशन बाय सोनू निगम जा रहे हो देन गेट अ बैकअप ऑफ अ कंफर्टेबल शूज, क्योंकि डांस इतना करना होगा यार, पैर तो दुखेंगे ही. अगर मूवीज जा रहे हैं तो स्पॉइलर मत देना प्लीज, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हो तो प्लीज टाइम पर घर चले जाना, उनको डिस्टर्ब मत करना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी सेफ, बी kind and make some time this weekend for something that doesn't need to be productive. Have a fantastic weekend, DFW. I'll see you back on Gupshup Gully on Monday, same time. Till then, enjoy.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
5: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
5: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
6: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
6: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
8: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
7: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
9: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
7: The One, Force of the Forest,
10: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
7: On 25th September in cinemas near you.
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
14: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट sometimes, इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 ईयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
15: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
16: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्यूटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
18: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
17: नहीं।
18: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
17: नहीं।
18: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
17: वो भी नहीं।
18: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
19: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
3: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
5: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
4: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
8: डील कहाँ?
4: सिंपल, Paisya पे। इंट्रोड्यूसिंग Paisya, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन Paisya, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
5: डाउनलोड Paisya, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
7: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
18: Stop infotainment.
17: हेलो, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून डैलस। दिस इज योर होस्ट आयुषी। घड़ी में बज रहे हैं 12:34 और हम पहुंच गए हैं रेडियो स्टेशन आपको एंटरटेन करने. फनीशा 104.9 FM, यू आर लिसनिंग टू योर होस्ट आयुषी एंड लेट्स स्टार्ट योर डे विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक.

बालों को फिर से करने को क्या बोलते हैं?

सुबह सुबह धूम मचा दी है, फ्राइडे है भाई, मूड तो बनना चाहिए। इस सेगमेंट में चल रहे हैं ऐसे ही कुछ धूम मचाले वाले गाने आप सबके लिए। फन एशिया 104.9 FM पे आपकी होस्ट आयुषी आपको एंटरटेन कर रही है, और ऐसे ही कुछ तड़कते भड़कते गाने लेकर के हम आपके लिए आए हैं, फ्राइडे का मूड बनाए रखते हैं। उसके पहले आपको ये बता दें कि आपके सपनों का घर आपके बहुत ही करीब है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे ज्यादा। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग। कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। चलिए अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, अ ब्यूटीफुल ट्रैक, एक्चुअली अ मजेदार ट्रैक फ्रॉम द मूवी अल्फा।

Wonderful song from the movie Alpha. Friday mood is on, and coming up with the next track, a beautiful song from the movie Honeymoon Travels. Studio पे call करिए और mood को नजर में रखते हुए अपने पसंद के गानों की फरमाइश दीजिए. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को फनी शो 104.9 FM पर.

This part of our show is proudly brought to you by AG FinTax, offering trusted tax accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. शो को आगे बढ़ा रहे हैं एक और बहुत ही अच्छे गाने की तरफ. फ्राइडे है भैया, हफ्ता खत्म हो गया है, जल्दी से काम निपटा करके घर जाना है और चिल मारना है. बिल्कुल आराम से बैठ करके फनिशा घर से एंजॉय करिए, कहीं से भी सुनिए 104.9 एफएम पे. फ्राइडे मूड को देखते हुए एक और मजेदार सा गाना.

0: That's right.
1: ओके, होपफुली मैंने फ्राइडे का मूड सेट कर दिया है आपको कुछ मजेदार ऐसे ही तड़कते भड़कते और फुल ऑन बीट्स वाले गाने सुना करके। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को। बस आधे घंटे ऐसे कुछ गाने चलाने वाली हूँ, फिर हम जाएंगे आज के स्पेशल टॉपिक पे, क्योंकि बड़ा ही स्पेशल दिन है आज का, तो इसको और स्पेशल बनाएंगे आपके साथ अगले सेगमेंट में जो कि ब्रेक के बाद है। फिलहाल एक और अच्छा सा गाना लेकर के आप लोगों के लिए आ रही है आपकी होस्ट आयुषी। इस गाने को एंजॉय करिए और फिर वापस आकर के हम अपना अगला सेगमेंट शुरू करेंगे।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
5: ओह हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: वेट, इतना सब और प्राइस?
13: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो।
16: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
13: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
17: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
13: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
17: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
16: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
22: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
23: कितनी लंबी लिस्ट है?
22: बस 2 pages। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
0: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
1: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
15: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
23: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
24: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीशिया 104.9 FM पे। और आज 25 सितंबर है, सितंबर 25th, विच इज द नेशनल डॉटर्स डे। तो अब इस सेगमेंट में कुछ गाने प्यारी प्यारी बेटियों के लिए। और बेटियाँ स्पेशल होती हैं ना। मेरे पास एक बेटी है और हम खुद भी एक बेटी हैं। एंड जब तक हम बेटी थे तब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते थे और ना ही हम इसके बारे में कुछ बोल पाते थे। बट आज क्योंकि हम एक बेटी की माँ हैं तो हम बोल सकते हैं कि बेटी होना और बेटी की माँ होना दोनों ही बहुत स्पेशल है। जहाँ आपकी माँ आपका घर है वहाँ आपकी बेटी आपका सुकून है। जैसे आप घर वापस जाकर के ना अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा जैसे भी मन करे वैसे रह सकते हैं। यहाँ कपड़े फेंक दो, वहाँ जाकर के अपने खाने की थाली छोड़ दो, जूठा कप छोड़ दो, परेशान हो तो परेशानी निकाल लो, चिल्ला लो, चीख लो। वही एक बेटी के लिए माँ होती है जहाँ पर वो सब कुछ खोल सकती है, अपना दिल खोल के रख सकती है, अपनी बातें कह सकती है। और दूसरी तरफ जब अपनी बेटी की तरफ देखो तो वो आपको आपका सुकून है। आपके ज़िंदगी में चाहे जितनी भी हलचल हो, जितनी भी परेशानियां हो, उन परेशानियों को आप उस सुकून को देखते ही ना सुकून में आ जाते हो। वो सुकून है बेटी, बस वो सामने जब होती है तो ऐसा लगता है कि बस ये समय, ये पल यहीं थम जाए। ये सारी बातें माँ बनने के पहले, एक बेटी की माँ बनने के पहले हम नहीं बोल सकते थे। आई नो बेटों की माँ भी बहुत स्पेशल हैं, आई विल नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी हियर, बट यस, डॉटर्स आर स्पेशल। दे लीव समथिंग, दे मेक यू फील स्पेशल एंड दे टर्न योर लाइफ स्पेशल। जितना प्यार, जितनी केयर हम अपने माँ बाप की करते हैं और हमारी बेटियाँ हमारी करती हैं, तो छोटी सी उम्र से ही ये बयां करना बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए बहुत सारे गाने ना बेटियों के लिए भी बने हैं और उनमें से एक बहुत ही प्यारा सा नंबर आपके लिए लेकर के आ रही हूँ।
25: मम्मी, पापा, माया बुआ, चाचा चाची, टीनी बीनी टिंगल और मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया, बस वही एक चेहरा वो हमें नहीं दिखाते। पता नहीं क्यों वही चेहरा वो हमसे छुपा कर रखते हैं, वही चेहरा जिससे हमें एक दिन प्यार हो जाता है।

मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।

0: मेरे पास सब कुछ है, बस मैं ये नहीं जानती कि वो कौन है जो मेरी जिंदगी में आएगा और मेरा हो जाएगा।
1: सेलिब्रेटिंग

0: सब कुछ है, बस मैं ये नहीं जानती कि वो कौन है जो मेरी जिंदगी में आएगा और मेरा हो जाएगा।
1: सेलिब्रेटिंग नेशनल डॉटर्स डे फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ फनेशिया, बेटियों के लिए कुछ प्यारे और खूबसूरत गाने लाइनअप करके रखे हैं और वही लेकर के आऊँगी अगले आधे घंटे तक आप लोगों के लिए। सो एंजॉय करिए, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने हैं जो बेटियों के लिए बने हैं। सो हैप्पी नेशनल डॉटर्स डे एंड हियर्स दिस ब्यूटिफुल ट्रैक।
2: बेटी की हर अदा में चंचल कहानियां होती है, घर के कण कण में बेटियों की निशानियां होती है, बड़े ही नसीब वालों के घर उतारी जाती है ये बेटियां। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, कायनात की रानियां होती है।

बेटियां, बेटियों के ऊपर प्यारे प्यारे गीत जो बॉलीवुड में बने हैं, उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारा गाना और है। कोक स्टूडियो का नंबर है एंड दिस वॉज लेटर टेकन इन अ मूवी एज वेल, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। टेकिंग यू टूवर्ड्स दैट सॉन्ग एंड देन वील टॉक अबाउट इट मोर।

0: echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
3: Figure not. We have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, Omar Khwaja.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट. Free entry and free parking. An event by My Square Feet.
8: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
9: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
8: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
9: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
18: तुमसे मिलके दिल का है.
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

बस दिस ब्यूटिफुल ट्रैक लाड़की, और इस गाने में है रेखा भारद्वाज की आवाज़, उसके साथ कीर्तिदन गढ़वी जी हैं, एंड द लिटिल गर्ल्स वॉइस दैट यू लिसन इन दिस सॉन्ग इज सचिन डॉटर. और ये ना बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन है एक बाप और बेटी के बीच में, जहाँ पे वो बोल रही है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, एंड देन फिर वही सवाल कर रही है कि क्यों मुझे शादी करके विदा करके आपने पराया कर दिया. एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ एवरी डॉटर, बट आजकल कोई डॉटर साथ नहीं छोड़ती है. एंड डॉटर्स आर रियली स्पेशल स्पेशल बिकॉज एक समय था जब बेटियों के पैदा होने पे बहुत कम खुशियां मनाई जाती थी, एंड आज का समय है जब वही बेटियां अपने माँ बाप का साथ ऐसे दे रही हैं जैसे उनको इस दुनिया में बस साथ देने के लिए ही लाया गया हो. सो यस, एवरी डॉटर इज स्पेशल, एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे फॉर ऑल द लवली डॉटर्स आउट देयर. एंड यस, आई एम अ डॉटर टू, सो आई एम ब्लेस्ड टू बी समवनस डॉटर हु इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर हु एट द एज ऑफ 3 इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड आई एम वेरी श्योर शी विल ऑलवेज डू दैट. Because if she is seeing her mom doing that, she will do that for me as well. Blessed to have a daughter and to be a proud daughter of my proud parents. And to all the daughters out there, you guys are special. अगर कभी किसी ने तुम्हें special नहीं feel कराया ना, तो उसको मुझसे मिलवा देना. हम बता देंगे कि तुम कितनी special हो. Anyway, शो को आगे बढ़ाते हैं. अगला एक और गाना है जो बेटियों के लिए लाइन अप करके रखा हुआ है हमने, जो हम लेके आएंगे आपके लिए. एंड दैट वो सॉन्ग इज इन द वॉइस ऑफ स्वस्ति मेहुल. शी इज़ अ फैबुलस सिंगर. शी हैज़ सम 2.92 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, एंड शी हैज़ अ बिग फैन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम टू. टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग, एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट पास ऑन अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन to you. PMJ Jewels is now in Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Explore beautiful gold, diamond and bridal collection for every celebration. Visit PMJ Jewels on Main Street, Frisco. Jewelry that tells your story.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
4: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
3: Miss Clicks?
5: 100 लोगों ने click भी किया.
3: Customers कितने आए?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
5: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
7: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुककीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
13: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
15: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
16: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
17: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
18: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
17: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
19: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
17: The One, Force of the Forest,
20: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
17: On 25th September in cinemas near you.
21: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
22: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो
23: 104.9.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और पिछला सेगमेंट हमारी बेटियों का था ऑन नेशनल डॉटर्स डे, टेकिंग यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट विद सम ब्यूटीफुल 90s नंबर्स जो कि आया है हमारी कॉलर्स की फरमाइश पर.

Here was this beautiful track from the movie बाजीगर और बेटियों के लिए गानों की फरमाइश आने लगी है. जी हाँ, फिर से एक बार मैंने सोचा था कि ये सेगमेंट अब ख़त्म करेंगे और गानों को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बट अगले गाने की फरमाइश जो है ना वो भी बिटिया के लिए है. प्यारी सी बिटिया रानी, 24 सितंबर द नेशनल डॉटर्स डे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट राइट फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ अनेशिया 104.9 FM. यू आर लिसनिंग टू योर होस्ट आयुषी. बिटिया घर की रौनक, घर की पहचान होती है ना, और माँ बाप की लाडली प्यारी बिटिया. भाई बेटियों को स्पेशल स्टैचर दिया गया है और हर घर में ना जब लड़की होती है तो एक अलग सी खुशी होती है और उसी खुशी को आज सेलिब्रेट करते हैं. मेरा भाई हमसे बचपन में कहता था, बहुत चढ़ाता था हमको, पराया धन हो जी तुम चली जाओगी. सुनो ना, पराया धन हो, लेकिन हम पराया हो करके भी पराया नहीं हो पाए. आज भी उस घर में जहाँ यू नो हम नहीं हैं, इतने सालों से बाहर हैं पढ़ाई के लिए और फिर शादी करके यहाँ आ गए US में, ऑलमोस्ट अब सेटल हो गए हैं, 8-9 साल 10 साल होने जा रहे हैं. फिर भी उस घर में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो पता है किसको याद किया जाता है, इसी बेटी को याद किया जाता है. आज भी अगर घर में घर का कमरों का रंग बदलना होता है या फिर मम्मी को कुछ स्पेशल करना होता है या भाभी को कुछ पूछना होता है तो सबसे पहले बेटी को याद किया जाता है. बेटी विदा क्यों ना हो जाए पर घर से ना उसका रिश्ता अटूट है. और वही बेटी जब दूसरे घर में जाती है तो वहाँ भी उसी रिश्ते को बनाने की कोशिश करती है. सो बेसिकली हम ना कहीं भी जा करके रिश्तों को और मजबूत ही करते हैं. तो बेटियाँ स्पेशल हैं और बेटियों से ही घर की रौनक भी है. तो अगला गाना आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं फिल्म लम्हे से और इसकी फरमाइश आई है हमारी कॉलर पूजा जी की तरफ से. आप भी अगर कोई गाना अपनी बेटी को, अपने घर की बेटी को या खुद को डेडिकेट करना चाहते हैं एज अ डॉटर, देन प्लीज़ डू द ऑनर्स. खुद को स्पेशल फील कराइए, बेटियों को स्पेशल फील कराइए. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर.

लम्हे फिल्म का ये गाना पूजा जी की फरमाइश पे था. थैंक यू सो मच. दिस वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक टेकिंग यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग. बट बिफोर दैट डैलिस, यू हैव टू गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. द वन ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ डैलिस में सेप्टेम्बर 26 को 8:30 बजे, और वेन्यू है द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. I repeat, that's 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam Live, aur exclusive media partner hai Fun Asia Network. Fun Asia 104.9 FM pe aap sun rahe hain apni host Ayushi ko. Mere jaane ka waqt ho raha hai aur hamari pyari Kiran ji ke aane ka time ho raha hai. Sunehri Kiran aayengi afternoon drive time lekar ke aap logon ke liye. और आज बड़ा ही स्पेशल सा सेगमेंट करने वाली हैं हमारी प्यारी प्यारी बिटियों के लिए. तो फिलहाल ये मेरा जो सेगमेंट है वो ख़त्म नहीं हो पाया, क्योंकि बेटियों से सब कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं. एंड वी सेलिब्रेट नेशनल डॉटर्स डे टुडे ऑन 25 सितंबर. फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ फन एशिया इज अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक, बाबा की रानी हूँ. बहुत ही प्यारा सा गाना है, इसको सुनिए, फिर अगले गाने की तरफ लेकर के चलेंगे आपको. साथ ही हमारा गिव अवे भी होने वाला है नेक्स्ट सॉन्ग में, सो स्टे ट्यून्ड.

सो हियर वाज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, आपकी ही फरमाइश पे था ये भी गाना. और बेटियों को सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक दिन नहीं चाहिए यार, हर दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, वही कर रहे हैं हम आज पूरे दिन यहाँ पर, सेलिब्रेटिंग नेशनल डॉटर्स डे फॉर ऑल द लवली डॉटर्स. तो अगर आप भी एक बेटी हैं तो ये दिन आपका है. गो एंड बाय योर सेल्फ अ गिफ्ट. घर लौटते वक्त अपनी बेटियों के लिए उनका फेवरेट चीज़ लेकर के जाइए. आई एम गोइंग टू डू द सेम फॉर माई लिटिल वन टूडे, बिकॉज सिंस द टाइम वो आई है लाइफ में, कुछ तो स्पेशल है यार, कुछ तो अलग है. उस वो फीलिंग एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं है. बट एनी वेज, सेलिब्रेटिंग ऑल द डॉटर्स टूडे फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ फन एशिया. शो को आगे बढ़ाते हैं. और हाँ भाई, आज आप अपनी बेटियों को लेके जाइए ना चंडीगढ़ बाइट्स, क्योंकि हम आपको $10 का गिव अवे दे रहे हैं, $10 ऑफ का ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50. एंड यू कैन टेक देम देयर दिस फ्राइडे. मेक देयर फ्राइडे स्पेशल, मेक देयर डॉटर्स डे स्पेशल. और यू कैन एन्जॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच. लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. विजिट चंडीगढ़बाइट्स.com फॉर डिटेल्स. तो भाई बस सिंपल सा काम है. हमारी एक प्यारी सी कॉलर ने एक प्यारा सा गाना जो है वो प्ले करने को कहा है सुजाता जी ने. सो आई एम प्लेइंग दैट ब्यूटिफुल ट्रैक. यू जस्ट हैव टू कॉल एंड टेल मी द नेम ऑफ द मूवी. अभी मैं गाना प्ले करूंगी, सुनिए और स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. ये रहा वो गाना और आपको मुझे बताना है फिल्म का नाम.

Here was this beautiful track from the movie English Winglish. और सही जवाब दिया है साइली बब्बर ने. जोरदार तालियां उनके लिए. एंड उनको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से गिव अवे $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50. प्लीज जाइए और एंजॉय करिए चंडीगढ़ बाइट्स का खाना. ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन में है इनका रेस्टोरेंट. और भाई आज का शो बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा रहा, बहुत प्यारे प्यारे गाने प्ले किए मैंने. मैं खुद की भी तारीफ कर रही हूँ और आपकी भी कर रही हूँ जिसने इस लिस्ट में कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नंबर्स ऐड करवाए हैं. एक और गाने की फरमाइश हमारे कॉलर की तरफ से आई थी. दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम अ ब्यूटिफुल डॉटर. नाम नहीं बताया उन्होंने इसलिए मैं भी नहीं ले सकती नाम. शी हैज़ डेडिकेटेड दिस सॉन्ग, लाइक रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग. इट्स अ लवली सॉन्ग. आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे. मतलब मुझे लग रहा है आधे घंटे और मिल जाएं. मैं और गाने प्ले करना चाहती हूँ. बट यस, इट्स टाइम फॉर किरण जी टू कम. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. आज के लिए विदा दीजिए, मंडे को फिर मिलेंगे. फिलहाल मैं अपनी बेटी को लेकर के 4:30 में फिर से आने वाली हूँ किरण जी के शो पर. सो या इफ़ यू आर हियर लिसन टू अस ऑन फनीशा 104.9 FM एट 4:30 फॉर द डॉटर्स डे स्पेशल सेगमेंट विद सुनहरी किरण. Signing off for the day. See you. Bye-bye. Have a great weekend.

0: का तेरा
1: फिर तू बना लेता गल से लगा लेता दिल यही और रहते।
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
6: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
7: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
8: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
10: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
3: Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
11: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: That garba was totally worth it. We had so much fun.
17: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
16: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
18: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
19: Bindas bolo,
0: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो,
19: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाई टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।

very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूँ किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Ayushi, thank you for an absolutely brilliant show as always. मैं हूँ किरण और आज है जी जुम्मा. Thank God it's Friday. I love Fridays. There are many reasons to love Friday. One, the weekend खत्म हो रहा होता है, यानी कि weekdays खत्म हो रहे होते हैं और weekend शुरू हो रहा होता है, तो that is the happy moment that I enjoy about Friday. और दूसरा ये कि आज होता है किड्स जंक्शन. जी हाँ, बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. 3 PM onwards I will be taking your calls live and your request. And today is daughter's day special. उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ बताऊंगी. और हमारे साथ मौजूद होंगी आज स्टूडियो में मदर्स एंड डॉटर्स के दो या तीन पेयर्स, एंड वी आर गोना टॉक एंड हैव सो मच फन विद देम. अ वेरी हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम. अच्छा, ये जो आधा घंटा होता है हमारा फ्राइडेज का 2:30 to 3 PM, ये हमारा होता है मिक्स स्पॉट. प्ले करती हूँ आपके लिए कुछ पुराने गाने और उनसे, उनके लफ्जों से जुड़े कुछ नए गाने. लेट्स बिगिन.

जी हाँ, मिक्स स्पॉट आप सुन रहे हैं राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई से मुझे याद आया जी गाना करीना कपूर और बॉबी देओल पे पिक्चराइज्ड अजनबी। मेरी जिंदगी में एक अजनबी का इंतजार है, वही प्ले करने लगी हूँ आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, बिकॉज अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ऐसा ही आपका ख्याल रखते हैं। किस तरह? फर्ज कीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या आपके पास पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आते, तो वो आपके लिए उन्होंने प्रोग्राम्स बना रखे हैं, जैसे कि आप उनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं उनके प्रोग्राम्स। passionhealthphysicians.com उनकी वेबसाइट है, जहां आप लॉग इन कीजिए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल आपको वहां मिलेगा। गिव देम अ कॉल इफ यू हैव अ क्वेश्चन, 214-666-6259। और बीमारी जो है वो जी देख के नहीं आती, ना वीकेंड देख के आती है, ना वीकडे देख के आती है। तो अगर आपको वीकेंड पे कोई परेशानी है, या फिर आपको वीकडे में टाइम नहीं मिल रहा एंड यू वांट टू गो एंड सी द डॉक्टर ऑन द वीकेंड, तो उसका भी इंतजाम है। और वो ये कि डॉक्टर शेरल शमाथिल, जो कि बोर्ड सर्टिफाइड फैमिली मेडिसिन फिजिशियन हैं, वो पैशन हेल्थ के अर्विंग लोकेशन पे आपको अब सैटरडेज 9 बजे से 1 बजे तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अवेलेबल हैं। तो आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वेदर इट्स अ चेकअप और अ प्रिवेंटिव केयर या फिर वेट मैनेजमेंट। ये आपको पैशन हेल्थ पे मिलेगी वो तमाम केयर जिसकी आपको जरूरत है, और वीकेंड्स पे भी। सो 9 AM till 1 PM ऑन सैटरडेज डॉक्टर शेरल इज अवेलेबल फॉर यू, 230 ओकोनर रिज बुलेवार्ड, स्वीट 110, अर्विंग टेक्सस 75038। दिस इज द एड्रेस, 214-666-6259 इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन to actually you need to call to get your appointment fixed.

जी हाँ, और अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कि वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या फिर कोई और स्पेशल सेलिब्रेशन, तो जी डेफिनेटली सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि केटरिंग कहाँ से होगी, वेन्यू क्या होगा, डिकोर कैसा होगा, इनविटेशंस, ये वो सब कुछ, और फिर पार्टी का स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताने लगी हूँ, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी पार्टी को बिल्कुल मेहमानों की तरह इंजॉय कीजिए, एंड लेट वेनेसा इवेंट्स डू एवरीथिंग एल्स फॉर यू। जी हाँ, दे ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, वेन्यू हो, डिकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी और साथ ही साथ केटरिंग बाय एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेनेसा इवेंट को बाय कॉलिंग हरी बसेरा साहब एट दिस नंबर 4694428770। 4694428770 इज द नंबर। हरी बसेरा को आपने कॉन्टैक्ट करना है वेनेसा इवेंट्स का। लेट देम हैंडल ऑल द स्ट्रेस फॉर यू, लेट देम बी योर सेलिब्रेशन पार्टनर वाइल यू एंजॉय योर सेलिब्रेशन।

और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, देन यू नीड एन अटॉर्नी बाय योर साइड हु कैन टेक केयर ऑफ योर केस एंड गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और वो अटॉर्नी है अटॉर्नी ओमर ख्वाजा. आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड लेट अटॉर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम डील विद द इंश्योरेंस कंपनीज, द पेपर वर्क, द लीगैलिटी. और बेस्ट बात इसमें यह है कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. सो इस मुश्किल वक्त में इट इज लाइक वो कहते हैं ना, राहत का सामान आपको दे रही हूं. अटॉर्नी ओमर ख्वाजा से कॉन्टैक्ट कीजिए फॉर अ कंसल्टेशन. दैट नंबर इज 4693005046, 4693005046, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज attorneyomar.com. With this song, we are heading on to a short break and then we will enter into Kids Junction.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
1: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
0: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
1: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
2: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
2: Barista House, richness of biryani bliss.
4: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
5: लैपटॉप में।
4: इन्वेस्टमेंट?
5: गूगल ड्राइव।
4: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
5: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
4: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
3: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
12: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
13: जीनी, हुकम मेरे आका।
14: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
13: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका। लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
13: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
14: और एंटरटेनमेंट?
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
13: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
15: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।
16: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

0: फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
1: हेलो दादा, बंद करो रेडियो.
2: हेलो, माय नेम इज आदि.
0: इज इट आवी?
1: आदि.
0: आदि, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड.
0: एंड व्हाट ग्रेड आर यू इन?
2: आई एम इन फिफ्थ ग्रेड.
0: ओके, एंड व्हाट इज योर सॉन्ग रिक्वेस्ट?
2: My song request is Pushpa.
0: Pushpa. Okay, I will play Pushpa for you. And you have a lovely weekend and rest of your day. Thank you for your call.
2: You're welcome.

0: Hey, Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
2: इस वन की काली शक्ति और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
1: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
3: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
1: The One, Force of the Forest,
4: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
1: On 25th September in cinemas near you.
5: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
6: कितनी लंबी लिस्ट है?
5: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
6: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
7: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
8: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
9: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
15: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
16: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.

And we have our winner, Daksh. Congratulations, जीत लिया है आपने Barista House की तरफ से ये giveaway. This is although I was looking for some daughters to give me a call, लेकिन लड़कों की कॉल ज्यादा आई and they were talking about their moms. तो जी जिसकी कॉल आई, they got the opportunity and Daksh, congratulations. Give us 2 days. आपका नाम और number Barista House पहुंचाने के लिए and then you will have 7 days to go to the restaurant and avail your $20 gift coupon dine in only. अच्छा जी ये तो हुई ये बात और अब हम फरमाइशें जो मेरे पास लाइंड अप है वो प्ले कर रही हूं. आई एम गोइंग टू टेक योर रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स बिकॉज फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स वी विल हैव मॉम डॉटर डूओज इन द स्टूडियो वन बाय वन एंड ये पेयर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगी. वी विल हैव सो मच फन चिट चैटिंग विद देम. टुडे इज नेशनल डॉटर्स डे एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट इन दैट ब्यूटिफुल वे राइट हियर ऑन किड्स जंक्शन ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
10: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन हाउ मे आई हेल्प यू
11: हेलो मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है
10: फिकर नॉट वी हैव द Perfect solution.
12: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: Beta, 95% aaye?
14: Haan, mummy.
13: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
15: Mera?
13: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
15: Whoa!
16: School ka report card saal mein ek baar aata hai, but business ka report card har mahine. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: It's true. Hum apne sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com
19: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
14: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं
20: डील कहाँ
14: सिंपल पास्या पे इंट्रोड्यूसिंग पास्या डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ ओपन पास्या सी व्हाट्स अराउंड यू फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन
20: डाउनलोड पास्या दैट्स PAASYA टुडे बिकॉज़ डील्स दूर नहीं पास है
21: In one moment, an accident can change everything.
15: When it does, you don't need sympathy. You need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
21: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. और बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी जी एक मॉम डॉटर डुओ जिनके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे. दिस विल बी आवर फर्स्ट पेयर हु विल बी इन द स्टूडियो. वी विल सेलिब्रेट डॉटर्स नेशनल डॉटर्स डे टुडे राइट हियर ऑन किड्स जंक्शन. बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कोई फाइनेंसिस का मैटर है आपका, यू वॉन्ट टू गेट सम स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर रियल एस्टेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आपको CPA सुधीर पाई से कॉन्टैक्ट करना है विद माई टाइम एक्विटी. दे विल हेल्प यू, गाइड यू स्टेप बाय स्टेप, क्रिएट पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर यू. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, देर इज नो हार्म इन गिविंग देम अ कॉल एंड डिस्कसिंग. दैट नंबर इज 4697021272 या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं mytimeequity.com. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: Amira.
0: Amira, how are you doing?
1: Good.
0: And what grade are you in, Amira?
1: Pre-K.
0: Pre-K. All right. Tell me, what is your song request?
2: Tell your song.
1: Chittiya Kalaiya Le.
0: Chittiya Kalaiya. Okay, Amira, why do you like this song?
1: Because it says Chittiya Kalaiya Le.
0: Have you ever performed on this song, like kind of at a wedding or somewhere?
1: No.
0: Okay, next time when there is a wedding or something, lots of girls, young girls have performed on this song, and that is why probably they love this song the most. But thank you for your request, and I will play your song in a bit, okay?
1: Okay.
0: Bye.

एंड विद दैट वी हैव अनदर रिक्वेस्ट. बहुत सारी रिक्वेस्ट एज आई सेड हमारे पास लाइंड अप हैं. और अगली रिक्वेस्ट से पहले मैं आपको बताती चलूं जी, कुछ मजे का आपका खाने को दिल कर रहा है, जैसे कि मुंबई और लखनऊ के बेहतरीन फ्लेवर्स, तो वो आपको मिलेंगे पेज 3 ईटरी पे. जी हाँ, दे आर लोकेटेड एट हब 121 इन मेकनी. अच्छा, आपको चाट खाने हैं या आपको यू नो स्नैक बाइट्स, क्विक बाइट्स का दिल कर रहा है, या आपका प्रॉपर खाना खाने का दिल कर रहा है, जैसे कि स्मोकी तंदूर डिशेस, बिरयानी, या फिर आपका सैंडविचेस खाने का, कुछ लाइटर रखने का दिल कर रहा है, कुछ रोल्स खाने हैं आपने, या फिर यू आर लुकिंग फॉर हैंड क्राफ्टेड कॉकटेल्स और हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट पेज 3 ईटरी. और डिनर

रखने का दिल कर रहा है, कुछ रोल्स खाने हैं आपने, या फिर यू आर लुकिंग फॉर हैंड क्राफ्टेड कॉकटेल्स और हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट पेज 3 Eatery. और डिनर हो, डेट नाइट हो आपका, यू वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स, एनीथिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, पेज 3 Eatery इज द प्लेस फॉर यू टू गो. यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, दैट इज फॉर श्योर. और साथ ही साथ उनके पिक्चर स्पॉट्स हैं जहां पे आप पिक्चर खींच सकते हैं. उनकी प्लेट जब खाना लग के आता है तो बंदे का दिल करता है कि थोड़ी देर जरा खाने को निहार ले, कुछ तस्वीर वस्वीर ले ले. इंस्टाग्रामेबल प्लेट्स कहती हूं मैं उन्हें, दे आर इंस्टाग्रामेबल प्लेट्स, सच अ प्लेजर. सो जरूर जाइए पेज 3 Eatery विजिट कीजिए टू चेक आउट देयर मेन्यू. ऑल यू हैव टू डू इज लॉग ऑन पेज 3 Eatery, 3 as in number 3, page3eatery.com इज वेयर यू नीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट them. They're located at Hub 121 in McKinney. Muntaha, this one is on your request, going out to you.

0: यू आर ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो और हमारे स्टूडियो में अब हमारी तीसरी जोड़ी यानी के मॉम एंड डॉटर डुओ नंबर 3 इज हियर इन द स्टूडियो एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू अस. दिस वन इज वेरी स्पेशल क्योंकि जो हमारी डॉटर है वो बहुत ही छोटी सी है, प्यारी सी है. लेट अस वेलकम हर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनीशिया. हेलो, गुड आफ्टरनून. व्हाट इज योर नेम?
1: What is your name?
2: Arya.
0: Arya, how are you, Arya?
2: Good.
0: And what grade are you in, Arya?
1: How old are you?
2: Okay. 3.
0: You are 3 years old? Oh my God, she is our youngest participant and I am so excited. I am nervous. What am I going to ask her? And okay, let's now Arya has introduced herself. Let's introduce Arya's mom. Mom, would you like to introduce yourself, please?
1: Hello to my listeners. This is Ayushi, your radio host, and I am with my little daughter Arya, who is just 3 years old. And as some of my listeners know, I call her Chutanki Rani.
0: All right, Ayushi, मेरे से पहले आज मौजूद थी, शो कर रही थी हमारे साथ, फनीशिया रेडियो पे करती हैं, and what an absolutely beautiful show she does. Ayushi, I'm so excited that I get to meet your lovely daughter, and I think I like her daughter more than I like Ayushi because बच्चे हम सबको हमेशा बड़ों से ज़्यादा पसंद आते हैं. So she's such a darling. Acha, Arya, right? Arya, you want to say something about your mom? Like, tell me something about your mom.
2: I love her.
0: You love your mom, okay. And Ayushi, Arushi, आप भी बताइए कि आप जो है अपनी बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगी.
1: So Arya is the cutest daughter. Arya helps mama a lot in the kitchen and doing her. She keeps her room clean. Yes, Arya?
2: Yes.
1: Yeah, and Arya always goes everywhere with mama.
0: Okay. All right. Acha, Arya. Okay, that's okay.
1: That's okay.
0: Arya, batao mujhe, aapko sabse achhi chocolate kaun si lagti hai? Ye kya bhai, naam batao.
1: Naam batao.
2: Chocolate?
0: Yeah, कौन सी वाली? You want Kit Kat अच्छी लगती है?
2: Dairy milk.
0: Dairy milk. Okay, मामा आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती
1: है? मामा को भी dairy milk पसंद है. That's why मैं देसी बच्चा likes dairy milk.
0: Okay.
2: मामा
0: कोलो. Wait. मामा कोलो. आर्या जो है वो इस वक्त चॉकलेट पे फोकस्ड है. लेकिन ये तो आर्या, ये तो आपको गिफ्ट मिलेगा ना जब आप मेरे से बात कर लोगी. तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आपकी मामा का फेवरेट फूड कौन सा है?
2: फुचका.
1: इधर देखिए
0: क्या है मामा?
2: फुचका.
1: फुचका. फुचका इज पानी पूरी. सो इन आवर साइड वी कॉल फुचका.
0: ओके, दैट शी न्यू. अच्छा मामा, आर्या का फेवरेट फूड क्या है?
1: आर्या लव्स जलेबी, राइट आर्या? एंड रसगुल्ला.
0: आर्या जो है बिल्कुल मेरे जैसी है, मुझे भी जलेबी बहुत पसंद है आर्या. अच्छा बताइए आर्या, आपकी मामा का फेवरेट कलर क्या है?
2: ब्लैक.
0: ब्लैक, is that right mama?
1: Yes.
0: Acha, aur mama Arya ka favorite color
1: Arya hai? Loves pink and purple.
2: No, pink. Only pink.
1: Only pink. Okay
0: mama, only pink right now. Please don't mix the colors for Arya. Acha mama, ek baat bataiye, aap Arya ke upar sabse pyara dress kaun sa lagta hai?
2: Frock.
1: Yeah, so Arya gave the answer. Arya loves frock.
0: All right. Arya ne kaha isse pehle ki mama ko ye wo ulti baat kare, main khud hi bol deti hu. Okay, so Arya, ab aap batao ki mama pe sabse acha dress kaun sa lagta hai?
2: Saree aur t-shirt.
0: Saree aur t-shirt. Okay, usme se ek pick karo Arya, saree ya phir t-shirt.
1: Sabse sundar kya lagta hai? Yeah. T-shirt.
2: Dono.
1: दोनों.
0: अच्छा भाई, नो पिकिंग. अच्छा, नो पिकिंग. अच्छा ये भी बताइए आर्या कि कौन सी ऐसी चीज करती है मामा घर में जिस पे आपको बहुत हंसी आती है? फनी मामा इज सो फनी.
1: स्कूल के बारे में?
0: अरे वो चलो स्कूल के बारे में पूछ लेते पहले. लेकिन पहले मैं सवाल मामा से भी पूछूंगी. मामा, ऐसा आर्या क्या करती है कि आपको बहुत हंसी आती है?
1: आर्या क्या करती है? आर्या जब भी मेरे पास आती है तो वो आकर के मेरे नोज पे बाइट करती है.
0: Oh.
1: And she loves my mole which I have. Yeah. And she touches that.
0: So all right, this is her way of showing you how much,
1: yes,
0: she loves you.
1: As a 3-year-old this is the only way she can express her love.
0: Yes. अच्छा आर्या, आप स्कूल के बारे में क्या बात करना चाह रही थी?
1: What's your school? Tell me your friend's name. फटाफट जल्दी से.
2: First we need to show this.
0: क्या कह रही
1: है? So yeah, Arya has a blue sticker from school.
0: Okay.
2: And so, brush too.
0: And okay. And what?
1: Brush too.
0: And brush too. Okay,
1: who gave
0: awesome
1: that to you?
2: Teacher.
1: Okay.
0: All right.
2: Mama,
0: okay. आर्या, अब आप ये बताइए, यू हैव टू टेल मी समथिंग. जब मामा रेडी हो रही होती हैं और आर्या भी रेडी हो रही होती है, तो मामा जल्दी रेडी होती हैं कि आर्या जल्दी रेडी होती है?
1: बोलो पहले, कौन जल्दी रेडी होता है?
2: हम
0: यानी कि
1: हम मतलब आर्या.
0: आर्या जल्दी रेडी हो जाती है यानी कि मामा लंबा
1: टाइम लगाती है.
0: हाँ, मामा बहुत टाइम लगा. अच्छा, दैट इज सो फनी. अच्छा आर्या, मैं आपसे पूछती हूँ, मामा को क्या पसंद है, कॉफी या टी? चाय या कॉफी मामा क्या पसंद करती हैं?
2: चाय.
0: चाय पसंद करती मामा, मेरे जैसी हैं. उसके बाद मामा को आर्या सोना ज्यादा अच्छा लगता है या शॉपिंग करनी ज्यादा अच्छी लगती है?
2: शॉपिंग.
0: और शॉपिंग में क्या खरीदती है मामा, कपड़े के, ज्वेलरी के, ग्रोसरी, कौन सी शॉपिंग करती है मामा?
2: सब शॉपिंग.
0: सारी शॉपिंग करती मामा, एज अ शॉपोहॉलिक. अच्छा, उसके बाद बताओ, मामा को बॉलीवुड फिल्में ज्यादा पसंद है कि हॉलीवुड फिल्में ज्यादा पसंद है?
2: हॉलीवुड.
0: ओके, सो टेल मी, व्हाट इज योर मॉम्स फेवरेट मूवी? मामा की फेवरेट मूवी कौन सी है?
2: रैपंजल.
0: रैपंजल. ओह माय गॉड, मामा इज लाइक अ डिज्नी प्रिंसेस. अच्छा, मामा को स्वीट ज्यादा पसंद है कि स्पाइसी?
2: स्पाइसी.
0: दैट इज ग्रेट. एंड मामा का फेवरेट सॉन्ग क्या है, ये बताओ? फिलहाल मेरे पास लेजा लेजा लाइन नहीं है. मैं ये गाने से वापस आती हूँ आर्या, फिर मैं मामा से सारे सवाल पूछूंगी आपके बारे में. सो स्टे ट्यून्ड. इतने में आप अपनी चॉकलेट जरा जल्दी जल्दी खत्म कर लें.

0: जी हाँ, आज हम सारी कुड़ियाँ यही कह रही हैं। राजा आर्या से, यस रेड लाइट इज ऑन, यानी कि आर्या इज ऑन एयर नाउ। सो आर्या से तो मामा के बारे में सारी बातें हो गई, अब हम मामा से पूछेंगे आर्या के बारे में। सो मामा, अब आप बताइए हमें, आर्या को पिज्जा ज्यादा पसंद है या पास्ता ज्यादा पसंद है?
1: पिज्जा।
0: ओके ओके, परफेक्ट। एंड मामा, इफ यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर मूवीज, व्हाट एक्साइट्स मोर?
1: शॉपिंग।
0: Arya, do you like shopping?
2: No, I like to look movie.
0: You like to look, okay, Mama.
1: Oh, I'm sorry, I got that wrong.
0: अच्छा, Arya को मीठा खाना ज़्यादा पसंद है कि savory dishes ज़्यादा पसंद?
1: नमकीन, savory.
0: नमकीन. अच्छा, और Arya की favorite dish आपने क्या बताई थी हमें?
1: जलेबी।
0: जलेबी, ये क्या चक्कर है? Alright. अच्छा मामा बताइए, is Arya an introvert or an extrovert?
1: Arya is like an extrovert.
0: I can see that. Yeah. For sure. अच्छा उसके बाद बताइए कि आर्या को जैसे आप कहते हो ना, बच्चे जब खेल लेते हैं, क्लीन अप, does she like
2: messy?
0: messy room या clean room?
1: Arya को clean room पसंद है.
0: Arya, do you like cleaner rooms? Okay. Or
1: say yes first.
0: Yes. Okay. And then tell me, Mama, does she like to watch TVs more या फिर movies more?
1: She likes TV more, YouTube.
0: YouTube. Okay. So does she like to watch? What does she specifically like to watch?
1: Which show do you watch on YouTube? Tell it here.
2: Diana, Roma.
1: Roma and Diana. She watches that show.
0: Roma and Diana. And
2: Natsa.
1: And Natsya.
0: Okay, perfect. And जब आर्या को कोई चीज चाहिए होती है तो वो मामा को बुलाती है कि पापा को बुलाती है?
1: किसको बुलाती हो?
0: पापा को बुलाती है। Okay, there you go. She's very particular about what she wants. तो अच्छा, एक और सवाल के साथ हम अपने सेगमेंट को कर रहे हैं रैप अप। आर्या का फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है?
1: जल्दी से बताओ कौन सा।
0: आर्या बताइए, who do you like? आर्या, who's your favorite actor?
2: Shahrukh Khan.
0: Okay, there you go. That is amazing. Okay, ji, I have to give a huge round of applause to Arya. All right, Arya and Mom, thank you so much for being here in the studio with us. Ayushi, why don't you wrap the segment right
1: Thank
0: here.
1: You so much for having us. And this was Arya's first time on radio. She wanted to see Mama's radio station too.
0: Yes.
1: And what special day could be, you know, from National Daughters Day. So wishing everybody a happy Daughters Day. And these daughters are really, really, really special.
0: Absolutely. Yeah. All right, guys, with that, it is a wrap from my side. Thank you so much for tuning in. I will see you on Monday, same place, same time, Fun Asia Radio, 104.9 FM, 2:30 p.m. till 5 p.m. Tab tak ke liye, you have a lovely, lovely rest of your day, your weekend, and a very happy National Daughters Day to all of you.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
13: Are sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
17: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
18: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
17: And pistachio lamb chops,
18: full on flavor ka fusion.
19: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
20: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
21: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
22: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
23: तुमसे मिलके दिल का है।
21: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
22: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart. Thank God it's Friday, दोस्तों 104.9 FM Funny Radio पर आपका स्वागत है और मैं आ चुकी हूँ 5 से 8 स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट अपना शो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे लेके. जब कहती हूँ कि द फ्राइडे वाइब इज ऑन क्योंकि अभी अभी मैंने ड्रॉप इन किया है फ्राइडे का वाइब एंड दैट वाज सच एन अमेजिंग शो. किरण ने सारी मॉम्स एंड डॉटर्स को एब्सोल्युटली फील गुड करा दिया. ऑल द किडोज हु आई सॉ गेटिंग आउट ऑफ दिस अमेजिंग स्टूडियो विद देयर मॉम चॉकलेट्स एंड गुडीज के साथ सच अ हैप्पी डे और ज़्यादा हैप्पी बन गया बिकॉज फनी एशिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट ऑल द मॉम्स एंड द डॉटर डे एंड इट वॉज सो सो सो वंडरफुल. इसी को तो कहते हैं मैम ब्लेसिंग वेन यू हैव योर लव वंस अराउंड एंड यू कैन शेयर दैट लव एंड दिस वॉज शेयर ऑन एयर विद आर एंटायर डैलस जनता दैट इज यू. The weekend vibe just felt so much of love. And all the best to all the daughters and moms. A very, very happy, happy Daughter's Day. It is so much fun to have a daughter. Jo mere paas nahi hai, lekin main to ek daughter hu na. So my mom is also here. So mom, daughter, daughter day. Super duper fun.

0: your opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Heere moti main na chahu.
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
5: अरे यार, घर मिल गया।
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
7: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
8: भूख लगी जोरों की
9: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
11: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
13: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
14: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
15: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
14: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
15: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
13: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
16: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
17: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
18: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
19: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
18: The वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट,
20: अ हिंदी मिथोलॉजिकल फोक थ्रिलर, डायरेक्टेड बाय अरुणव कुमार एंड दीपक कुमार मिश्रा। सिजलिंग द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया।
21: ऑन 25th September इन सिनेमाज नियर यू।
22: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू आर ट्यून्ड इन टू FunAsia रेडियो।
23: वेलकम बैक दोस्तों, वी वर ऑन एयर एंड वी हैड विद अस मिस लीना पटेल फ्रॉम द बेल टैक्टिक। वी वर टॉकिंग अबाउट सम रियल गुड स्टफ एंड वी गॉट इन टू द ब्रेक, बट लेट मी गेट बैक विथ लीना ऑन FunAsia रेडियो। सॉरी लीना, वी हैड गॉट इन टू वॉक इन टू द ब्रेक, बट वेलकम बैक। वी हैड अ लिटल फ्यू थिंग्स दैट आई कुड नॉट एंड विथ बिफोर आई लेट यू गो, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट वॉट हैपन्स वेन वी आर इन 50s एंड 55। यू सेड वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट द टाइम हैज़ गॉन, बट वॉट इज राइट नाउ वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, इज इन दैट राइट?
24: That's very correct, yes.
23: Okay, so how how can listeners reach you, and what more do you have to say? One thing that listeners should do now.
0: Yes, this is something very important. And if you didn't catch me before, then listen to me now. You need to know your retirement number. And I don't mean ke aap khud ko poocho ke how much do I have in my 401k. That's not what I mean. What I mean is, how much monthly income will you need when you retire? Where will it come from? How long does it need to last? These are the important questions we need to talk about. Because having retirement savings and having a retirement income plan are two different things. Savings, everyone has it. Mm-hmm. But having the plan is what we're looking for.
23: That's right. So the planner is right here. That is our dear Leena Patel. So Leena, how can listeners reach you?
0: Definitely. I'm not sure whether your retirement plan is on track or if it's not. I'm offering a complimentary retirement review for the first 10 callers. We'll review your current 401k or IRA, whatever aapki timeline hai, your goals. That's the biggest thing. It's really asking you the questions on what are you looking for. And we want to identify any potential gaps that you have in your current strategy. And if you don't have a strategy, let's build one. So call us at 469-693-2077. Again, that's 469-693-2077 to schedule your complimentary review. Awesome. Don't wait until retirement to find out whether you are ready for retirement.
23: No, man, you should be doing it now so that you can retire early, right?
0: Yes, exactly. Awesome.
23: Thank you so much. You have a wonderful weekend. Bye-bye.
0: Thank you. Bye-bye.
23: That was Miss Leena Patel from The Wealth Tactic. दोस्तों ये गाना जो बज रहा रही हूँ ना, एक्चुअली ये फिल्म का नाम है VVAAN, विवान ही लगेगा. बट हाल ही में दे वर प्रमोटिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन ऑल दीज द बिग बॉस. दे वर प्रमोटिंग देयर शो एंड एक्चुअली न्यूमरोलॉजी से जो वर्ड्स को कैलकुलेट करते हैं, एंड दे नेम्ड इट VVAAN इज वन. अरे VVAAN विवान तो हो सकता है, वन कैसे है आई डोंट नो, बट प्लीज जस्ट नो वन है. वन वन का ये गाना आपके लिए. तो वन कैसे हो सकता है यार.

0: वाओ, समझो ना, नहीं समझ रहे हो तो समझ लो यार। 104.9 FM फन एजा रेडियो सुन रहे हैं। पता है ये झेलू राम ना, आई आई कुडंट बिलीव ही कुड डू दिस। मतलब कि ऐसा भी कोई करता है क्या मौके पे चौका? आई मीन बोलते हैं, पता है कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई, तो झेलू राम कहते हैं मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा, सोचा शायद कह दे बेटा हमारी इज्जत रख लो। वाह वाह वाह, क्या जमाना देखा है, लेट ही तो हुई है, मतलब शादी करा देंगे तुमसे। हाँ झेलू राम, तब कुछ भी राइट। कभी कभी समझ ही नहीं आता है झेलू राम को ये सब दिमाग में आते कहाँ से बातें। ओह माय गॉड, ये तो अच्छा है भाई, कोई लेगा और बोलेगा चलो मेरी लड़की से कोई और नहीं आ रहा, लेट हो रही है बारात, तो तू मेरे से शादी कर लो।
1: ऐसा लगा तो नहीं।

इंटरेस्टिंग था ना, वाओ, डिफरेंट सा था. और ये आपके लिए ही था 104.9 FM फन एचआर रेडियो पर. वैसे गाने तो अनेक होते हैं. ये वाला आपके लिए है, ऑल यू पीपल इंजॉयिंग नवरात्रि सीजन. वैसे दो जन मिलके अगर एक गाना को बना ले तो इसे कोलैब कहते हैं, कोलैबोरेशन. ध्वनि भानुशाली, इनका बहुत क्यूट म्यूजिक वीडियोस हमेशा रहते हैं. उनके साथ किंजल दवे, आप जानते होंने, जो हर साल हमारे शहर में आती हैं, आप लोगों को खूब नचाती हैं ऑन नवरात्रि. द नाइस काइंड ऑफ गरबा डांडिया की नवरात्रि में नचाना, राइट? देयर यू गो, फन मिक्स ऑफ कोलैबोरेशन.

0: माय गॉड, सुपर डुपर वाइब तो है इसका, फन फिल्मी वाइब।
1: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
2: लैपटॉप में।
1: इन्वेस्टमेंट?
2: गूगल ड्राइव।
1: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
2: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
1: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
3: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
5: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
3: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त थाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
3: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स।
0: वेलकम, स्वागत है, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, कैमो नाचो केम छो, वेलकम ऑन दिस अमेजिंग शो जिसका नाम है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। क्यों अमेजिंग कह रही हूँ? क्योंकि वो अमेजिंग शाम ही हो जाती है जब हमें कहने का मौका मिलता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हर एक के गले से, मुंह से यही आवाज़ निकलती है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और या फिर थैंक गॉड वीकेंड आ गया है। तो वीकेंड का वाइब, वीकेंड में ड्रॉप इन कर देती हूँ अर्ली, और एक बहुत ही खास खबर जो आप लोगों को पता तो हो ही गई होगी, लेकिन आई एम रिवीलिंग राइट नाउ ऑन माय शो, रणवीर सिंह ऑफिशियली बिकम्स गर्ल डैड टाइम्स टू। दुआ अब बड़ी दीदी बन गई है। द स्वीटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़ ऑफ द वीक, दुआ हैज अ लिटिल सिस्टर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वेलकम देयर सेकेंड बेबी गर्ल ऑन September 19th। यस, 25th हो गई है अब। द अनाउंसमेंट सिंपली रेड वेलकम बेबी गर्ल, साइन बाय दुआ, दीपिका एंड रणवीर, सो क्यूट. एंड बॉलीवुड फ्रेंड्स फ्लडेड देम विद कंग्रेचुलेशंस. तो हमारी तरफ से भी एक स्पेशल वाला कंग्रेचुलेशंस टू दीज टू अमेजिंग गर्ल्स. यू नो, दीपिका की बेटियां हैं दो, और डबल ब्यूटी, डबल मजा, डबल इंटेलिजेंस, डबल सब कुछ. सच अ ब्यूटिफुल फैमिली. There you go, and this song is dedicated to this gorgeous, beautiful family. Mile inhe full-fledged ki dua.

गूंजा सा कोई एक तारा, और ये बहुत ही खूबसूरत एक तारा दुआ की छोटी बहन आ चुकी है, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की सेकंड बेबी, एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और पता है, ये बताते हुए मुझे बहुत अजीब लग रही है, अगर अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि हमें कुछ अगर उन्हें भिजाना हो, बिकॉज वी आर सो हैप्पी एंड वी आर फैंस, और ये जो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची दुनिया में आई है उनके लिए, तो हम SFL वर्ल्ड वाइड को यूज़ कर सकते हैं, वाई नॉट, है ना? क्योंकि दे कैन सेंड एनी थिंग फ्रॉम हियर all the way to India and back, and you know they are amazing. और भी इनके बहुत सारे amazing offers हैं, situations हैं जिसमें आप इनको use कर सकते हैं. You can avail the services of SFL Worldwide. Festival season आ ही गया है and it calls for these outfits. यार इंडिया में क्या मिलते हैं, मिठाई, नमकीन और सारी आपकी फेवरेट गुडीज, और भिजाना हो तो भी bring them home with SFL Worldwide with doorstep pickups and deliveries, plus ocean shipping भी आप करा सकते हैं for larger items like पूजा मंदिर अभी ज़रूरत है, ओ झूला, आप सोचिए फर्नीचर मंगाना हो, वो ऑथेंटिक बड़ा सा घर ले लिए, बस मुझे तो वो झूला चाहिए जो मैं मिस कर रही हूँ, जो हम बैठ के झूला करते थे. येस, यू थिंक अबाउट इट एंड गेट इट हियर. शिपिंग हो, मूविंग हो, विद इन USA, फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड वाइड, यूज SFLWorldwide.com. फोन उठाइए, नंबर दबाइए 800-691-2335. SFL Worldwide, ब्रिंगिंग फेवरेट्स क्लोजर टू होम. यार और मैंने भी आपको एक आइडिया दिया है, दीपिका और आर वेरी स्वीट हार्ट रणवीर सिंह को कुछ बजाने का मन है क्या? आई मीन जस्ट टेलिंग.

0: वाओ, आर यू रिकग्नाइजिंग दिस वॉइस? इस वॉइस को अगर आपने पहचान लिया ना, तो आपको मिलेगा मिराज लाउंज की तरफ से एक गिव अवे, वॉइस वी हैव हर्ड आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और अभी ब्रांड न्यू वापस से फिल्म दृश्यम आने वाली है, सेम अजय देवगन, एंड दिस इज़ द थर्ड किश्त ऑफ दृश्यम. दृश्यम हैज़ ऑलवेज बीन मेड वेरी वेरी वेल. आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग मे बी द अनदर वन ऑफ दृश्यम, बट दिस इज़ द कंक्लूजन, सो दिस इज़ द फाइनल फाइनल वर्जन ऑफ दृश्यम. सो आपको मिल सकता है मिराज लाउंज की तरफ से एक गिव अवे. मिराज लाउंज, एक्सपीरियंस मिराज लाउंज फॉर प्रीमियम हुक्कास, डिलिशियस बाइट्स, कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट्स. आप इंजॉय कर सकते हैं हैप्पी आवर मंडे थ्रू थर्सडे 11 AM टू 6 PM, प्लस लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट. तो लेट मी सी इफ आई कैन गेट दैट आंसर फ्रॉम दिस लिसनर. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय,
0: हाय, हाय, हाउ आर यू? हु इज दिस?
1: श्रीनिवास.
0: श्रीनिवास, टेल मी, डिड यू गेट द वॉइस?
1: यस आई डिड.
0: हु इज इट?
1: मकसूद महमूद अली.
0: ओ माय गॉड, जिनका क्या नाम है? माय गॉड, आपने ट्रिक किया ना. करेक्ट, आई नो, वेरी वेरी गुड दैट यू नो हिज रियल नेम, बट लॉट ऑफ अस जस्ट नो लकी अली, राइट? कितना समय के बाद उनकी आवाज सुन रहे हैं. आई थिंक सर वाला जो गाना था ना, जब वेन सर केम आउट रिपीट में आई यूज टू लिसन टू सर. ही हैज सो मेनी सॉन्ग्स, बट आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम लिसन टू लकी अली. आपको
1: agree.
0: हाँ, सो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन दैट ही इज कम बैक?
1: ओह यस, आई एम वेरी एक्साइटेड. आई हैव बीन अ फैन फॉर लाइक यू कैन से मोर देन 20 इयर्स. यस
0: यस,
1: आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फ्रॉम हिज फर्स्ट डेब्यू एल्बम एल्बम सुपर.
0: या सुपर,
1: दैट्स लाइक 25 26 इयर्स अगो आई गेस.
0: सुपर, ऑसम. सो आई विल टेक योर इंफॉर्मेशन फॉर अ गिव अवे, ओके? प्लीज डोंट गो अवे, ऑलराइट? Hold on. Thank you. सुन रहे 104.9 FM फनेजा रेडियो, और ये जवाब एब्सोल्युटली सही. इट इज लकी अली. एंड समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज अ स्माइल टू मेक लाइफ अ लिटिल मोर ब्यूटिफुल. और ये जो मुस्कुरा दो गाना है ना दृश्यम का, इट इज अबाउट दैट. इट इज द कंक्लूजन, अ स्वीट फील गुड सॉन्ग दैट रिमाइंड्स अस टू स्माइल. मुस्कुरा दो, लाफ, हंस दो, एंड फाइंड जॉय इन द लिटिल मोमेंट्स. लकी अली रिटर्न्स विद अ सोलफुल वॉइस, ब्रिंगिंग अ स्पेशल वॉर्म्थ टू दिस ब्यूटिफुल मेलोडी. मुस्कुरा दो, शायद अभी बजेंगे मुस्कुरा दो ये वाला गाना ऑन अ लूप, बिकॉज लकी अली इज बैक आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. इस गाने को कंपोज किया है रोचक कोहली ने, एंड दिस इज रिटन बाय मनोज मुंतशिर. एंड यहाँ पर सफी, आपकी पसंद, द सॉन्ग गोज आउट टू यू सफी. बिग शाउट आउट ऑन फ्राइडे नाइट.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, division of Brazos National Bank.
7: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
8: Hello Texas परिवार, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
12: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
13: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
12: Aakhir kya hai is biryani mein?
13: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
14: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
9: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
15: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
14: कितनी लंबी लिस्ट है?
15: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
14: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
16: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाए विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
17: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
14: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज एंड गेट 1 एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
19: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
18: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
19: वो पता नहीं।
20: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
18: Ab hui na smart marketing.
20: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
21: Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.

वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। कैसे हैं दोस्तों आप? ये जो बहुत ही खास शाम है, ये फ्राइडे की शाम है और फ्राइडे को मन होता है यही कुछ बोलने का।

अभी तक आप थैंकफुल नहीं है फ्राइडे का तो बस बोल ही दीजिए, अब तो वीकेंड है यार। फाइनली यू आर आउट ऑफ योर वर्क, सो दैट्स व्हेन एक गहरी सी सांस लीजिए, फुल फ्लेजेड, दिल भर के, पेट भर के, और उसे जोर से छोड़ दीजिए और कहिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ब्रांड न्यू सॉन्ग फॉर यू।

0: ये तो यस्टरडे सॉन्ग्स है तुमसे दिल मिलने को दिल करता है एंड द सॉन्ग इज हियर। पता है आपको नई खबर, शाहरुख खान, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ पर पता है सिर्फ एक एड में। जी एक एड बनी है उसमें ये तीनों एक साथ है, नॉट अ फिल्म, न्यू कमर्शियल फीचरिंग ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर एंड दिस हैज गॉन कंप्लीट वायरल इंक्लूडिंग दैट दे आर डांसिंग टू अ सॉन्ग। चलिए वो एड थोड़ा सा सुनते हैं, बहुत छोटा सा एड है।
1: उनका बार बार बार तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार
0: सो आई विल गिव यू व्हाट इट इज कि एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है इन तीनों को टू मेक एन एड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइप।
1: सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
2: क्या चीज है वायरल है?
1: थैंक यू।
3: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठ
2: बैठ जा, बैठ जा।
3: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
2: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली.
3: सो क्यूट. ये तीनों अपनी फिल्मों के अराउंड रूंगटा टीएमटी बार का एड बना रहे थे, लेकिन जो मालिक है ना वही जो बोल दिया वही लकीर इम्पॉर्टेंट है और फाइनल है. सो ही केम विद एन आइडिया, ही केम गेव ऑल ऑफ देम द मनी बट मेड हिज ओन आइडिया. आई मीन रियली हुक्का बार. लेकिन फैंस ना इमीडिएटली बातें करना शुरू कर दिया, यार ये तीनों एक फिल्म में आ क्यों नहीं रहे? शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एक फ्रेम में, और गाना भी अक्षय कुमार का. मतलब ये चौथा एक्टर कहीं ना कहीं तो घुस ही गया ना. बॉलीवुड मल्टीवर्स इसे ही करते हैं कहते हैं शायद. पूरा कंप्लीट हो गया. बट रियली व्हाट एन एड. इट इज़ गेटिंग full-fledged attention, going viral, and look, it's fun to see them together in an ad promoting their film with the ad, but Roongta TMT Bar.

सुपर डुपर 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं. दिस वाज अक्षय कुमार प्यार प्यार प्यार हुक्का बार इन द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वायरल एड बिटवीन द थ्री बिग सुपरस्टार्स. और ये है नन अदर देन शाहरुख खान एंड द क्यूट कपल आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर. पर यू नो अक्षय कुमार से एक बात याद आई, गोलमाल जो फिल्म बनी है आज तक, द गोलमाल गैंग इज़ ऑफिशियली कमिंग बैक. ये आज ही अनाउंसमेंट हुई है. रोहित शेट्टी हैज़ अनाउंस January 8, 2027 फॉर गोलमाल 5. तो क्यों अभी बता रही हूँ, क्योंकि इसमें अजय देवगन तो है ही है, अर्शद वारसी, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, ये सब आ रहे हैं. वाह वाह वाह वाह, यू नो द गोलमाल एंड इट्स ऑलवेज फन टू वॉच गोलमाल. एंड शर्मन जोशी भी आ रहे हैं, बट अक्षय कुमार इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इस फ्रेंचाइजी को फॉर द फर्स्ट टाइम. आई मीन अक्षय कुमार भी ज्वाइन कर रहे हैं. अब गोलमाल ऑलरेडी इतनी कॉमेडी और एक के बाद बनी जा रही है, अब अक्षय भी आ जाएंगे तो फिर क्या होगा इसका. आई मीन कुछ लेते क्यों नहीं, गोलमाल ली ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा तो लग ही रहा है. दिस इज गोलमाल 3 से अजय देवगन मूवी. करीना कपूर थी इसमें. 20 साल हो गए हैं फर्स्ट गोलमाल आए हुए. मैडनेस कंटिन्यूस और इस बार अक्षय के साथ ओवरडोज़.

वाओ वंडरफुल ऑसम, यही तो है मज़ा। और पता है दोस्तों, ये जो दिल से दिल की बात दिल तक पहुंच जाए ना और लग जाए ठाए, तो ऐसी होती है कभी कभी गहरी वाली बातें। किसी ने कहा, एक उम्र गुजार दी हमने चाहत में तेरे, एक उम्र गुजार दी हमने चाहत में तेरे, हाय बड़े खुशनसीब होंगे तुझे मुफ्त में पाने वाले। 104.9 FM फन एजा रेडियो, ब्रांड न्यू गाना आपके लिए।

गन मास्टर जी नाइन इमरान हाशमी और जिनीलिया हिमेश रेशमिया की औसम आवाज़ वापस से, लकी अली की आवाज़ आ गई, हिमेश रेशमिया की आवाज़ आ गई, ये सारी आवाज़ें जो कहीं पुरानी आवाज़ें थी वो वापस आ रही हैं और यहाँ हमारे ही शहर में ये बहुत ही खूबसूरत आवाज़ फिर से आ रही है, सोनू निगम की आवाज़। सोनू निगम रेवोल्यूशन के ज़रिए ये फुल फ्लेजेड कॉन्सर्ट जो होने वाला है कल ही, बहुत ही अनफॉरगेटेबल नाइट होने वाली है। सोनू निगम, अभी अभी मैंने एक रील पोस्ट किया था दैट आई हैव सीन मल्टीपल शोज ऑफ सोनू निगम एंड ही इज़ अ फुल फ्लेजेड पैकेज ऑफ सच एन अमेजिंग कॉन्सर्ट। वो तो गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मिमिक भी करते हैं, वो गाने में, आवाज़ में, आई मीन अरिजीत की आवाज़, किशोर दा की आवाज़, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, यू नो उदित नारायण की आवाज़ वो बहुत अच्छा कॉपी करते हैं एंड ही डज इट, और हम ऑडियंस को मज़ा ही आ जाता है बिकॉज ही इज़ सो सच अ हार्ट थ्रॉब, ही इन्वॉल्व पीपल सो मच। द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है कल, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं रेवोल्यूशन। और ये 8:30 बजे का शो है एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर में और ये एलन में है। फेवरेट सॉन्ग्स होंगे आपके, सोनू निगम की तो बात ही ऐसी है कि उनके गाने भी, हर एक गाना इतना अच्छा है, इतना ब्यूटिफुल, रोमांस हो, कॉमेडी हो, मस्ती हो, यू नो कुछ हैप्पी गो लकी सॉन्ग हो, वी हैव हर्ड सो मेनी सॉन्ग्स इन हिज वॉइस। इतना कुछ वो स्टेज में परफॉर्म करके, लोगों को इन्वॉल्व करके भी उनका सुर जो है, ही इज़ वेरी वेल नोन इन द एंटायर वर्ल्ड दैट ही इज़ द मोस्ट सुरीला सिंगर, जिनकी आवाज़ इधर से उधर नहीं जाती, सुर इधर से उधर हिलते नहीं हैं, डांस करते हुए भी, इन्वॉल्व करते हुए भी, लोगों को बातें करते हुए भी, मिमिक करते हुए भी, मिमिक कर रहे हैं लेकिन सुर कहीं नहीं जा रहे। वाओ, सुपर। गेट योर टिकट्स एट टिकट मास्टर राइट हियर राइट नाउ टुडे 855-360-SHOWS। आप कॉल कर सकते हैं अगर आप ग्रुप हैं, आपको कुछ बात करनी है अबाउट द शो टुमारो, यू गाइज वॉन्ट टू गो, जस्ट नोट दिस नंबर, कॉल देम 855-360-SHOWS। रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव राइट हियर इन डैलस, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर्स अस फनीशिया नेटवर्क, वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड कुछ और जानकारी चाहिए तो फोन उठाएगा, नंबर दबाइएगा 9 2 2 3 5 5 5 5 5 स्टूडियो का नंबर।

सुपर दिस वन तुमसे मिलने का सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग मैं हूँ ना फिल्म से और अब बन चुकी हूँ मैं आपकी जीनी. सोनू निगम लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है कल. आपकी कोई फेवरेट सोनू निगम की वेरी वेरी फेवरेट सॉन्ग है फोन उठाई नंबर दबाई 9722355555 स्टूडियो का नंबर है. ये जीनी बस अभी सोनू निगम ही प्ले करने वाली है. सो देयर यू गो द मैजिक वॉन्ड इज ओनली फॉर द मैजिकल वॉइस ऑफ सोनू निगम एंड ही इज कमिंग हियर टुमारो विद हिज अमेजिंग शो रेवोल्यूशन. इनका शो लाइव देखने का मजा ही ऐसा है, शुक्र अल्लाह करने का मन होता है.

0: छोटा सा ब्रेक ले रहे दोस्तों, आप कहीं मत जाएगा. वी आर इन टू सोनू निगम टुनाइट विद अ फ्यू ऑफ मोर ऑफ हिज सॉन्ग्स. टुमारो इज द बिग कॉन्सर्ट लाइव, आप स्टेज पे उन्हें देख सकते हैं. ticketmaster.com से जाके अपनी टिकट्स अभी ले लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं ली.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
5: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
6: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
7: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
6: The One, Force of the Forest,
8: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
9: On 25th September in cinemas near you.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग. एन इवेंट बाई माई स्क्वायर फीट.
13: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Bar in Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
0: Beautiful, सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio on this Friday night. और Saturday night is all about सोनू निगम. थोड़े बहुत गाने उन्हीं के बज रहे हैं और वैसे तो सोनू निगम यार, एक तो हमेशा दिल में बात रही थी कि वो जो आइकॉनिक गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, 1942 अ लव स्टोरी, आर डी बर्मन का लास्ट यू नो एल्बम वाज 1942 लव स्टोरी, और उसमें सोनू निगम को रिप्लेस करने वाले थे आर जी बर्मन विद कुमार शानू. कुमार शानू जी का भी शो हुआ था लास्ट हफ्ते, एंड बट बिकॉज ही वॉज लेट एंड आर जी बर्मन सेड सोनू इफ शानू डजन कम वी विल टेक यू फॉर दिस सॉन्ग. बट शानू दा पहुँच गए टाइम पर, इसीलिए उनका टाइम चालू हो गया. कुमार शानू हैड सम मोर स्ट्रगलिंग ईयर्स, but he also proved himself. But imagine the chahat and the very very iconic album of and the last album of R.G. Burman, maybe Sonu Nigam hote agar chance wahan par mil jata to chance pe dance karna chahte the but nahi kar paaye. This one for you, Sanjay ki request. As I said, genie bani hui hu Sonu Nigam ke gaano ke liye, because tomorrow is his concert and we are listening to some superb beautiful lovely songs of Sonu Nigam.

That is our very dear, very super, very, very loving Sonu Nigam. वैसे तो बहुत सारे languages में गा सकते हैं ये. You know, he has 12 languages जिसके ऊपर उनका command है, including Hindi, Bengali, Kannada, Tamil, Telugu, Marathi. Oh my God. Child artist रहे अपने dad is singer. छोटे से अपने dad के साथ ही थे. जब 3 ही साल के थे, क्या हुआ तेरा वादा, मोहम्मद रफ़ी का गाना उन्होंने उनके साथ 3-4 साल old, 3-4 years old, he sang with his dad. So there you go. वहाँ से पहुँचते पहुँचते गाने गाते गाते इतना खूबसूरत हमें रिझाते रिझाते आ तो चुके हैं इतने दूर और अब हमारे ही शहर में आ रहे हैं. डोंट मिस दिस यार, दीज लेजेंड्स डोंट कम ऑफन. बहुत वक्त, बहुत यू नो को वो होती है, अ लॉट ऑफ एफर्ट. या एफर्ट इज पुट टू ब्रिंग सच legendary singers. इनके लिए इतनी मेहनत होती है. When they plan the entire trip, they plan the show, they plan the musicians, they plan light, background, dancers, everything. It's a huge, humongous work when they come out to entertain all of us, to give that live evening. हर शहर शहर में. And the amount of work they do, Friday show, Saturday show, Sunday show, रात दिन का पता नहीं आ रहे हैं flights में. You know, and so many people they are around, and उसके ऊपर गला नहीं खराब होना चाहिए, हमारे ही हो रहे हैं because of all the change of season, change of weather. They have to keep sure that they have their voice intact because that's what is the most important in their shows, and they are traveling day, night, नींद नहीं पूरी हो रही है. Hats off, kudos to them to give us these live performances. और हमारे को करना क्या है, टिकट लेना है, जाना है, लाइव परफॉर्मेंस देखना है, वो भी हम कितने बार मिस आउट कर जाते हैं. छोड़ो यार, आज कोई फ्रेंड्स से मिल रहे हैं हम, वो प्लान है, वहाँ जाके मिल लो यार. कभी कभी आते हैं ये स्टार्स, गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट, द ड्यू डिलिजेंस जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट. और टिकट्स ticketmaster.com पे है. जस्ट सेइंग इट फ्रॉम माय हार्ट, वॉच हिम. कितने ही तो साल और ये आते जाते रहेंगे और हमें लाइव शो का मौका मिलेगा, कभी कभी मिलता है.

यही तो बात है, सोनू निगम की सबसे खासियत बात यही है, उनकी रेंज। ओ माय गॉड, क्या रेंज है उनकी आवाज़ में। रोमांस चाहिए एक गाना है, हार्ट ब्रेक चाहिए तन्हाई, यू नो मैं हूँ ना, यू नो पेट्रियोटिज्म चाहिए, संदेशे आते हैं, मस्ती मैं हूँ ना। सो देयर इज़ अ सॉन्ग फॉर एवरी वन एवरी टाइम। हम सोनू निगम हमें हमेशा याद रहते हैं डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ आर लाइफ, स्कूल हो, कॉलेज की रोमांस हो, वेडिंग हो, हार्ट ब्रेक हो, रोड ट्रिप्स हो, समवेयर इन आवर मेमोरीज देयर इज प्रोबेबली अ सोनू निगम सॉन्ग प्लेइंग। एंड दिस वन एक्चुअली गोइंग आउट फॉर आमिर अजीज एंड ज़ेरा अजीज, वो आप अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं एनिवर्सरी, योर मॉम कॉल्ड आमिर फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ none other than the rock star, the amazing singer who has a great range coming live tomorrow.